0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30.
4: तुम भी कैसे? टाइगर डे।

0: सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट।
1: साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे? टाइगर

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30.
4: तंबे कैसे?

0: सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर।
1: गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन।
2: शिव, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूजुअली फॉलोड? आल्सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, what kind of dry runs are done? Who decides upon the protocol? What is the tune to be sung? What's the process for that?
3: So what you're seeing right now is what the Prime Minister always does. He walks past the tri-service band and contingent there. Let's put the sound up, then I'll tell you.

0: the God of Honor complete the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal E.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dhiraj Seth. The General Officer Commanding Delhi Area will conduct the Prime Minister to the dais on the ramparts to hoist the national flag. The Prime Minister, swiftly, smartly walking through the Lahori Gate, now moving towards the central courtyard right behind the ramparts of the Red Fort.
1: सम्मान गारद का निरीक्षण करने के उपरांत प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राची की रग्रसर विशाल और भव्य लाहौरी गेट प्रवेश के लिए जहां पर एक काठ का पुल है 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाजा जिसके तीन मंजिलें हैं प्रधानमंत्री महोदय लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर हो रहे हैं और कुछ ही समय के उपरांत वे यहां उपस्थित अपार जन समूह को संबोधित करेंगे ध्वजारोहण करेंगे
0: कैप्टन सोनिया सिंह चौहान विल असिस्ट द प्राइम मिनिस्टर इन होस्टिंग द नेशनल फ्लैग इट विल बी सिंक्रोनाइज्ड विद द 21 गन सल्यूट by the valiant gunners of the 172-1 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pawan Singh Shekhawat. And the gun position officer will be Naib Subedar, Assistant Instructor in Gunnery,

0: आनुतोष सरकार।
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय का लाल किले की प्राचीर पर आगमन हो रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर के अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।
0: The moment that everyone has been waiting for, and happily so, the moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of a billion plus souls, where he shall hoist the national flag.
1: लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर सीसगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है।
2: एंड वी नाउ अप्रोच द हाई पॉइंट ऑफ द सेलिब्रेशन, द अनफर्लिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द एड्रेस टू द नेशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट सिटीजंस आर द ट्रू ड्राइविंग इंजन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity and opportunity.
1: उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें एक जेसीओ और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा।
0: लेट फ्रीडम रेन, द सन नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, एज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ सेड, द प्राइस ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज हैवी, but the freedom it brings is absolutely priceless, and priceless are the moments that we see captured by Doordarshan cameras, looking at a magnificent view of the ramparts and the central dais, everyone in the audience enclosures waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister at the central dais, from where he will hoist the national flag and address the nation. Excitement all around, smiles galore, the hope in the eyes, the brightness on the faces truly shows that each and every person here truly believes in the story of India, in the growth story of India, in the sustainable story of India.
1: Is bar jo enclosures hain, jo dirghaen hain, darshak dirghaen aur vishisht dirghaen, उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें भटकल, भीमताल, चंद्रताल, पुलिकट, पुष्कर, रविंद्र सरोवर जैसी झीलें शामिल है। यहाँ पर उपस्थित जनसमूह आप देख सकते हैं कितने उल्लसित हैं, उत्साहित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के

आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एक मात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन।

दिए, हर साल चार गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल तीन गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर दे

मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में
भारत के पर भरोसा करने लगे हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और उसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा था। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार।
ये

होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और उसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना,
देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन उस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते हैं। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्यायतंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन भाई, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है।
दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफपीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए, हम आगे चलते हुए, हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों,
हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत

बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमेंस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा, शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा, मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के अंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव

कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं,
आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न रखते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1,00,000 करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में
350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल की एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, ...2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके,
परिवार पर आर्थिक बोझ न आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है, और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं, और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए, तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए, और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद,
लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, आज युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की थी, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का
आधुनिक आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं, वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों सांगन में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं। वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा, सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का
काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है,

हमारा अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सब से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों से कहूंगा समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: You know, given that Dimagi Naxal is likely going to trend any moment now and become the big talking point, let's get a round of reactions on that. Tushar, yes, you were saying before we went to that bite.
2: Yeah, so this phrase is going to trigger a lot of people, and for all the right reasons. Because we know amongst us, there are now pressure groups, there are lobbies that want to disrupt infrastructure for whatever reasons. We also have people say, ki bhai, highways or airports banane ki kya zarurat hai? Last year, we were listening to one of the Congress spokespersons in Bihar, who said ki Bihar mein toh highways liye banaye ja rahe hain, kyunki yahan ka paani le jaya ja sake. So, you know, it's not unrealistic what the Prime Minister said. Another comment, someone said that training 1 crore people in AI is impossible or it's a Herculean task. You know, you can pluck the lowest hanging fruits. ONDC, which is an open marketplace for e-commerce, that is where you start training people in AI. You can train young tutors who can take over the mantle of free coaching. So there's a lot that can be done. Only the right brains have to put together their ideas, and a lot can be accomplished. So I don't see why some people are already getting pessimistic about the targets set by the Prime Minister.
3: Okay, a direct question. Jay, who do you think the Dimagi Naxal is that the Prime Minister was referring to?
4: Well, I think we all know who the Dimagi Naxals are, Padmaja ji, because again, I think for the second year running, you've had the leader of the opposition, Rahul Gandhi, not attending the Independence Day function, which is so shameful, according to me, because today, yes, I agree with what Mr. Srivastava said earlier, that it is about politics. But well, today is also about, you know, pride in being an Indian. And these are, you know, as much, you know, institutions of what independent India are, you know, coming to the Red Fort and addressing the nation. Yes, you can have political differences, but you ought to be there. But coming back to that Dimagi Naxal comment for a moment, according to me, this is very much a clash of ideologies and a clash of ideas. And according to me, what the Prime Minister said in his speech, you know, regarding reforms, it's very, very relevant. Because now look at how we're going to take on these Dimagi Naxals. Mm. We need the FCRA amendment, for instance. You need to stop funding for these so-called Dimagi Naxals and their handlers within India. And of course, being financed and influenced by those who are sitting outside India, who as Tushar very rightly points out, want to stymie India's growth. They want to stall infrastructure projects. So this is absolutely a clash of two very powerful ideologies. And I think the Prime Minister...

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
5: रियली
4: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे.
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
2: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
4: दिस isn't जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस, येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
8: रियली?
7: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
8: हाउ?
7: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
8: इट्स द माही वे।
9: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जला कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
6: Really?
5: Your mobile recharge is done.
6: How?
5: Make all kinds of payments using

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे?

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: शायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
7: अरे मेरे राजा।

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: Minister Modi has warned of Dimagi Naxals. He says while Naxalism has weakened in India, some people in the nation still carry a Naxal mindset and they need to be identified and isolated. Minister Modi's big appeal to the opposition from the Red Fort today, he has asked all opposition parties to support 33% for women. He has also urged them to come forward and back the women's quota. Listing out 7 streams, Prime Minister Modi says manufacturing, farming, technology, Gati Shakti, Raksha Shakti, green energy and solar remain India's Saptadhara. Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has unfurled the tricolour at Fort St. George in Chennai today. This is his first Independence Day ceremony as the Chief Minister of Tamil Nadu. His friend Trisha Krishnan also participated in this ceremony. Prime Minister Modi in his Independence Day speech today has warned that while red terror or Naxalism has been defeated in this country, the Dimagi Naxals are still present, prevalent around us and they need to be identified and isolated. At the same time, the Prime Minister put youngsters at the heart of his speech and at the heart of his Viksit Bharat vision, saying that India prioritizes its Yuva Shakti. He announced AI skill training for 1 crore young people. He has also announced free online coaching for competitive examinations and a nationwide sports talent hunt for children aged between 5 and 15. The Prime Minister also highlighted the expansion of universities and increase in medical seats, and he has said that youngsters remain the biggest beneficiary of his policies.
1: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको। 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी हैं। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 800 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1,00,000 करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है।
0: Let's also take a look at how the opposition reacted to the Prime Minister's speech. Several leaders in the opposition also spoke on what they felt on what the Prime Minister said, and here are some key reactions.
2: शब्दों का आज आविष्कार हो रहा है, कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नक्सली है, और ये मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता आज के समय पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का। और ये जो किया है, ये कहीं ना कहीं भड़ास निकल रही है, जो नौजवानों में आज आक्रोश पैदा हुआ है सरकार के खिलाफ, शायद उसका परिणाम है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है।
0: Well, Prime Minister Narendra Modi also made a fresh push for women's reservation bill today from the Red Fort. As part of his address to the nation, Prime Minister has called on all political parties to come forward and support the women's reservation bill, women's reservation, and also ensure that the quota is implemented. Prime Minister Modi has said that women must be given the rightful place in India's democracy, its politics, and he has urged opposition parties to join the effort that his government has initiated. The Prime Minister had also appealed to parties across a political spectrum to support this move, saying that women's representation is not just a matter of one party, but that it needs to be a national priority for everybody.
1: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए, और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माता और बहनों को हक दीजिए।
0: Well, politics has erupted over Prime Minister's push for women's reservation. The opposition has slammed Prime Minister Modi after he urged all parties to come together and pass the women's reservation bill. Congress has in fact slammed Prime Minister Modi and said that if the Prime Minister is concerned about women's reservation bill, it should be implemented now. Remember, the Prime Minister today asked all opposition parties to come together and said that women's reservation needs to be a national priority issue. But the opposition says that it is ready for women's reservation bill to be implemented in the existing 543 seats and it does not want any delimitation. The opposition has also stated that Congress has already given mandate for women's reservation in 2023 in the existing 543 Lok Sabha seats, and the BJP should have implemented it by now.
2: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है, इंतजार किस बात का है, लागू करना चाहिए। जहाँ तक परिसीमन की बात है, पहले जनगणना होती है, उसके बाद एक आयोग बनता है, आयोग की सिफारिशों के बाद परिसीमन लागू किया जाता है। तो ये जो थोपने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष, पूरा देश है।
0: Well, Congress President and Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, has responded, reacted to the Prime Minister's speech, and he has particularly spoken about the Prime Minister's allegation that Dimagi Naxals are trying to divide the country. The Prime Minister, in fact, said that it's important to isolate and identify Dimagi Naxals or people with the mindset of Naxals. Mr. Kharge has said that Gen Z are not anti-nationals. The Congress president has also said that Prime Minister Modi claims credit for everything, and he's also gone on to say that he should not claim credit for all changes in the world, and he has also said that Gen Z are not anti-nationals, and that he has alleged that it's the BJP that's running a hate campaign against protesters.
3: Aaj samvidhan har nagrik ko असहमति और शांतिपूर्ण आंदोलन की अधिकार देता है। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। तो हमने ये जो अधिकार दिलाए हैं, उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी हमारी है, इसीलिए हम ये करते रहेंगे।
0: That is Mallikarjun Kharge speaking on the Prime Minister's speech today. Prime Minister Modi, meanwhile, laid out a broad blueprint for a self-reliant and developed India by 2047. He said that Atmanirbharta remains the conviction behind his Viksit Bharat vision as India races to becoming the world's fastest growing major economy. The vision spans 7 pillars, that's what the Prime Minister said. Saptadhara is what he called them: manufacturing, agriculture, technology, Gati Shakti, defence, self-reliance, and the green and blue economies, and also India's global soft power. Energy security also took centre stage in the Prime Minister's speech. He said that the country targets 100 gigawatts of nuclear power and 5 new nuclear reactors, stressing the growing energy needs of chips, AI and data centres. And the larger message that the Prime Minister gave out was, India must dream bigger and turn those dreams into a national resolve.
1: प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: Well, Prime Minister Narendra Modi there, while delivering his speech, has also given us a glimpse into what his governance looked like in the last 13 years and what can be expected from here on. With that, it's time for a short break. More news and updates on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
6: Really?
5: Your mobile recharge is done.
6: How?
5: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
1: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
2: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
3: तुम भी कैसे?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
5: Really?
4: Your mobile recharge is done.
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
7: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
8: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
7: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।
9: तंबी कैसे?

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
4: तंबी कैसे? टाइगर कैसे?
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
5: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
6: Really?
5: Your mobile recharge is done.
6: How?
5: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
6: It's the Mahi way.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे?

0: नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर झेलम की कलकलाहट मुझे सुनाई दे रही है। मेरे ठीक सामने पीओके के पहाड़ हैं और जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ, ये गेटवे ऑफ कश्मीर भारत के नक्शे पर उरी, जो साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तान के साथ जो चार युद्ध हुए हैं, उन चार युद्धों में इस ज़मीन का अपना एक अलग महत्व है और इसीलिए हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर जवानों की अग्नि परीक्षा भी होती है, विजय का जश्न भी होता है, तो आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए इससे बेहतर जगह और इससे बेहतर साथ क्या हो सकता है। तो आज जवानों के बीच हमारे साथ पटौदी के नवाब हैं, दिलों के सरताज हैं और सिनेमा की दुनिया के सुपरस्टार हैं, सैफ अली खान। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका।
1: नमस्कार मीनाक्षी जी।
0: नमस्ते,
1: थैंक यू,
0: वेलकम।
1: नो नवाब प्लीज, सिंपली एन एक्टर।
0: चलिए, लेकिन आज रील की दुनिया से आगे निकल कर रियल लाइफ में आप पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं, जहाँ से हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं।
1: मैंने फिल्में की हैं पास में, हमने LOC कारगिल की फिल्म भी की थी और बॉर्डर के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन इतना करीब कभी पहले नहीं है।
0: आज का दिन सैफ अली खान से आगे निकल कर जवान बनकर दिखाएंगे।
1: करेक्ट,
0: तैयार हैं आप? जय जवान। आइए बढ़ते हैं। आइए, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आपको लेकर आए हैं
1: जी।
0: और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सामने हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वो इस जगह की सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर चैलेंजेस क्या है वो बताता है। हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट है
2: जी। ज़रूर, अभी आप एक व्यू पॉइंट पर खड़े हैं और जिस लोकेशन पर आप अभी खड़े हैं, हम तीनों साइड में POK से घिरे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो आपको हर चट्टान पर एनिमी की पोस्ट दिखेगी, बेस पर पोस्ट दिखेगी।
0: They can also see us.
2: Correct.
0: Right now?
2: Present. Yes. In real time.
0: अच्छा, क्योंकि उरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है पाकिस्तान का, जो भी हमारे वॉर्स हुए उस हर वक्त में ये बहुत सेंसिटिव रहा। और अभी जो ऑप्शन के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली जोड़ें तो ये पूरा एक झेलम वैली, जो अगर अभी हमें नीचे दिख रहा है, ये झेलम वैली का अगर आप इंस्टेंस लें तो पुराने टाइम से ही जब हम बोलते थे झेलम वैली कार्ट रोड या फिर सिल्क रूट, यही वो रूट है जो श्रीनगर को कनेक्ट करता था मुजफ्फराबाद, फिर इस्लामाबाद और फर्दर टू सेंट्रल एशिया। सो सारा ट्रेड इसी रूट से होता था। इसकी खास बात यह है कि ये विंटर्स के टाइम भी कट ऑफ कभी नहीं हुआ था, तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस ये रूट हमेशा ओपन रहा था। ये लास्ट में एक लाइन ऑफ डिफेंस बन गया था, जिसको अभी हम LC के नाम से या LOC के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पिछले साल यहाँ पे काफ़ी शेलिंग हुआ था, बट अगर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूँ डिफरेंस बिटवीन हमारी आर्मी और उनकी आर्मी,

0: पारी आर्मी ने कभी भी किसी सिविलियन एरिया पर एक भी बम नहीं गिराया, हालांकि हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे, बट उन्होंने यह नहीं किया। हमारे काफ़ी गांव में बहुत भारी मात्रा पर नुकसान हुआ था।
1: तो POK इस बार्ड वायर की उस तरफ से शुरू होता है।
0: जी, तो नाला एक सिधाई बना रहा है,
1: नीचे इस तरफ भी POK,
0: नाले की इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ POK स्टार।
1: हाँ,
0: आपको जो गांव सामने सारे दिख रहे हैं और जो रिज लाइन्स दिख रही हैं वो सब POK हैं।
1: You explain so nicely and you're so clever, yaar. Brilliant.
2: So nice.

0: आपने बंकर देख लिया, बंकर के अंदर जिंदगी क्या है और कैसे दुश्मन पर नजर रखनी है, लेकिन ये देखिए आपने हमें लाइव पेट्रोलिंग की। जो रूटीन प्रोसेस और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे ख्याल
1: से, ये नदी से है,
2: ये पूरा फेंस है, तो बेसिकली दो पोस्ट के बीच में अगर हमें फेंस को डोमिनेट करना है तो हम उसको पेट्रोलिंग से करते हैं। और एक सवाल आपने मेरे से ऊपर भी पूछा था कि ख़राब मौसम के टाइम पे हम कैसे फेंस की निगरानी करेंगे या देखेंगे या सर्विलेंस डिवाइस से, तो पेट्रोल आपके सामने लाइव जो चल रही है ये फेंस की निगरानी करती है, कोई भी दुश्मन दिखने पर ये फायर करेगी या फिर चेक करेगी कि फेंस इंटैक्ट है या कोई घुसपैठ हुई तो नहीं। हम लोग अपने घर में तो रेस्ट ले सकते हैं बट पेट्रोल्स कभी भी ख़राब मौसम के टाइम कभी रुकती नहीं है। तो आपने भी एलओसी शूट की थी उस टाइम पर, क्या आपने भी ऐसे ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश की थी?
1: थोड़ी पेट्रोलिंग की और हमें थोड़ा एक्शन करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का स्ट्रेस था ना, बिकॉज इट्स क्वाइट हाई अप।
0: कैप्टन अनुज नैयर का किरदार आपने,
1: दैट्स राइट मैम, वेल रिमेम्बर्ड।
2: तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है आर्मी में जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नाम, नमक और निशान। आपने इसको बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा, अगर इसका आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो नाम हमारे पलटन का नाम, नमक हमारे देश का नमक और निशान हमारा झंडा जो आपने ऊपर देखा या तिरंगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें मोटिवेट करती हैं इन सोल्जर्स को अभी भी चलने के लिए इस हार्ड टेरेन में और इस भी ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं।
1: शाबाश, जय हिंद,
0: जय जवान,
1: जय हिंद, जय जवान।
0: फॉरवर्ड पोस्ट में अभी तक जितना समय हमें मिला, मेरी नजर कुक हाउस पर आकर टिक गई है। पेट पूजा का वक्त है। आर यू हंग्री?
1: आई कुड ईट।
3: अब तैयार है आपके लिए एक, हमने बहुत अच्छा,
0: क्या बात,
1: आफ्टर यू।
0: वाह क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक छोटे से सेटअप में सारे जरूरत के सामान मौजूद है यहाँ पर।
1: एक्चुअली खाना बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी आग की जरूरत होती है।
0: और हम तो सुपर शेफ से बात कर रहे हैं। हाँ।
1: आपको कैसे मालूम? सुपर शेफ तो नहीं, लेकिन हम भी किचन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं हम घर पे।
3: क्या आप अपने हैंड्स यहाँ ट्राई करना चाहेंगे?
1: I don't mind, अगर आप मुझे कुछ सिखा दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
0: पूरी बनाई आपने जिंदगी
1: में? नहीं, एक्चुअली नहीं बनाई।
0: चलिए आज फिर आपकी का टास्क है।
1: कैसे करना है भाई?
0: थोड़ा सा रखना पड़ेगा।
1: This is very nice, Meenakshi. Let me see one second. I'm taking the. Yeah, take this. It's very good. You're doing well. And I like that. This is mine. No, my God. You fix this one also.
0: Yes.
1: Meenakshi, well done. Wow. Let's have a puri today.
0: का मैं जिक्र कर रही थी कि जितना इम्पोर्टेंट पूरी का बेलना, उसका तले जाना, उतना ही इम्पोर्टेंट है गरम गरम पूरी को खिलाया जाना। ठंडी पूरी में बात नहीं, मजा नहीं आता।
1: थैंक यू,
0: दैट्स नाइस। दिल पे जो खराशी है तुझको ये तराशी है। खाना बनाना एक आर्ट है, खाना खिलाना भी एक आर्ट है।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
0: अच्छा आप बस ये बताइए, पहचान कर किसने बनाया है? एक मैंने बनाई है, एक सर ने बनाई है, बताइए क्या लग रहा है आपको, किसने कौन सी बनाई है?
4: ये वाली सर ने बनाई।
1: ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो गलत प्रोफाइलिंग वाली बात हो गई। आपको लगा मैडम अच्छी पूरी, बट आप करेक्ट हो।
0: आप खाना भी खाइए प्लीज।
1: हम भी खा रहे हैं
0: बिल्कुल आपके लिए भोजन का पूरा अरेंजमेंट।

0: दाल एंड राइस। तो आप कहाँ से हैं?
1: हरियाणा से।
0: तो हम भी हैं थोड़े बहुत।
2: हम भी हैं थोड़े बहुत।
3: मैम एक्चुअल में हम तो इधर बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, आपके फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आयोगे, तो आपको इधर कैसा लग रहा है? इधर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, कैसा माहौल है, क्या क्या लग रहा है आपको इधर?
2: मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो घर में हम लोग आर्मी की बातें, दफ्तर में आर्मी से रिलेटेड कई बार शूट्स होते हैं, खबरें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इतने नज़दीक से जब देख रहे हैं ना तो सरियल जिसको बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा एक बार के लिए कि ऐसी कंडीशंस में आपको दिन रात जज्बे के साथ जुड़े रहना है।
0: और हमारे बच्चे भी हैं, वो पूछते हैं कि दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं इस टाइम पे, यू नो, और ख़तरा भी उन्हें लगता है। वो पूछते हैं कि हमें कौन देख रहा है और क्या होगा और सिचुएशन बढ़ेगा तो नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, हमें आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी आपको सलाम भेजते हैं और हम वी आर ऑल वेरी प्राउड।
2: चलिए खाना हो गया। जी खाना हो गया। अब अपने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
0: अब आके
2: हजम करते हैं। प्यारी बातें आप सबके साथ में हुई। यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन।
0: सो नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
2: चलिए लेकिन अभी आज के दिन में हमारे कुछ और प्लान्स हैं आपकी बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी, तो अब उस वक्त को आगे बढ़ाते हैं।
0: यस।

0: सैफ, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं अमूल सेतु की तरफ, लेकिन इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से मुजफ्फराबाद 50 किलोमीटर और इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, लेकिन इस जगह तक आम टूरिस्ट भी आ सकते हैं। हम भी इस वक्त आपको लेकर जा रहे हैं झेलम के ऊपर बना हुआ अमन सेतु, लेकिन तैयार किया गया ताकि उस तरफ और इस तरफ लोगों की एक स्मूथ आवाजाही जो है, क्योंकि यहाँ से बस भी गुजरा करती थी, लेकिन 2019 के पुलवामा हमले के बाद जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को में उतार चढ़ाव आया और सब चीज़ हुई, उसके बाद से ये बंद, लेकिन अभी भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे
1: जिस सड़क से आ रही थी। यस, आई थिंक टूरिस्ट को भी हम इंडियंस को दिखाना जरूरी है कि द आर्मी वी आर सेफ।
0: कमान अमन सेतु में कहाँ तक जा सकते हैं लोग, बस ये दिस इज द लास्ट पॉइंट।
2: जो जब हम कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो लास्ट पॉइंट ये कमान अमन सेतु गेट होता है। इसके बाद जो ब्रिज है जो आप सामने देख रहे हैं, ये 2005 में एक रिकॉर्ड टाइम 6 घंटे में बिल्ड किया गया था। ये पूरा ब्रिज इंडियन आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट ने बिल्ड किया हुआ है
1: 6 घंटे में।
2: हाँ जी,
0: 6 घंटे में
2: जी। एंड इसका 2/3 हिस्सा हमारे पास है एंड 1/3 हिस्सा एनिमी के पास है जो कि POK है। अभी आप सामने अपने देख सकते हैं ये एनिमी के कुछ लोग, साथ ही साथ उनके फ्लैग। अगर आप क्लियरली वहाँ सामने व्यू पॉइंट के पास देखेंगे तो आपको दो डिस्टिंक्ट झंडे दिखेंगे। पहला झंडा आपको पाकिस्तान का झंडा अगर मालूम है वो बाईं तरफ है, और दाहिनी तरफ सफ़ेद धारी और पीले रंग का जो आपको झंडा दिख रहा है वो आज़ाद कश्मीर या POK जो हम बोलते हैं उसका झंडा है।
0: इतना करीब कभी इससे पहले आना हुआ?
1: पहली बार। बस वहाँ के वो साइंस भी पढ़ने को मिल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे देखिए द रिटन कोट्स बाय इकबाल अबाउट जॉइनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जॉइनिंग अंडर वन, आई थिंक इट्स अ कॉल फॉर ऑल इस्लामिक्स।
0: परवेज साहब आप हमें एक्सप्लेन करेंगे?
3: मैं एक क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जो कमान पोस्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे POK वाले साइड में उन्होंने बहुत सारे फ्लैक्सेस लगाए हैं, तो स्लाइटली जो आप देखेंगे ग्रीन रूफ बिल्डिंग के स्लाइटली लेफ्ट साइड एक फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, एक हमारे सामने एक ब्रिज के जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। तो इन सारे फ्लैक्सेस पे इन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी है, इलामा इकबाल जो पॉइंट है। तो स्लाइटली लेफ्ट साइड जो व्यू पॉइंट का जो फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं वो आपके लिए पढ़ूँ, उसमें इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, विच मीन्स कि पाकिस्तान इज दैट लाइट विच नेवर एंड्स। एंड जो दूसरी दो लाइन्स लिखी हुई हैं, एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काश्कार तक, विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्रॉम रिवर नाइल इन इजिप्ट टू काश्कार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट द होली काबा, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द होली काबा वेयर मुस्लिम परफॉर्म हज। एंड जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लैक्स बोर्ड, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट इस बोर्ड पर इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है। 3 लाइंस लिखी हुई हैं, तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सेकंड लाइन इज़ पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड लास्ट लाइन इज़ कश्मीर पाकिस्तान की शरण, विच मीन्स पाकिस्तान

0: इन पाकिस्तान की
1: जगलर मैन और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एज अ रिलीजियस कंट्री, जब वो बना वो मजहब के आधार पे बना, एंड सेकंड लाइन इज उसकी रिलेशंस किसी भी कंट्री से या कश्मीर से वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जगलर मैन ऑफ पाकिस्तान। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे की है, इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लैक्स बोर्ड लगा के, विच इज़ मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दैट रिलीजन डोंट टीच अस टू हेट ईच अदर, एंड इट आल्सो शोज द सेक्युलर नेचर ऑफ आवर कंट्री, एंड हमने उर्दू में लिख रखा है ताकि वो पढ़ सकें। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन फ्लैक्सेस के बारे में कि ये वाली फ्लैक्सेस और ये वाली फ्लैक्स पेन डाउन बाई सेम पॉइंट इलामा इकबाल, तो रिप्लाई भी हमने उसी पॉइंट का दिया। तो ये कमान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग,
0: इसमें मुझे लगता है एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कि आपके पास नज़र तो है लेकिन क्या नज़रिया है देखने का या नहीं है, और जिन लेखक और जिन शायर के ज़रिए उन्होंने धर्म के आधार पर एक मैसेजिंग की है, उन्हीं शायर की लेखनी से हमने पूरा भारत कैसे एकजुट होता है उसका मैसेज यहाँ पर दिया है। प्राउड टू बी एन इंडियन। सैफ, जब आप इस वक्त इन वादियों को देख रहे हैं
2: जी,
0: तो आप सोचिए कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच इंडियन आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है।
2: एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि हमारे देश का एक सबसे खूबसूरत, शायद सबसे खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज थोड़ा सेंसिटिव है और इट्स नॉट ओपन टू फुल टूरिज्म एंड ऑल ऑफ अस, इट्स लिटिल सैड इन अ वे, यू नो, काश ऐसी खूबसूरत जगह में हम, यू नो, पूरा देश कंफर्टेबली आ सकता।
0: कश्मीर तो एक वक्त में
2: फिल्मों की शूटिंग मेरी माँ ने इतने गाने किए, शॉट सो मेनी फिल्म्स, माय पेरेंट्स आल्सो,
0: उनकी डेब्यू फिल्म कश्मीर की करी,
2: कश्मीर की करी,
0: शॉट इन कश्मीर। मैं आपको अब मेरे ख्याल से देश की सबसे पर्पस ड्रिवन व्हीकल जो है,
2: वाओ,
0: और एट द सेम टाइम जहाँ पर सिक्योरिटी और भरोसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं, उस व्हीकल की तरफ लेकर जा रही हूँ, इंडियन आर्मी का कैस्पर व्हीकल। आर यू रेडी फॉर इट?
2: एब्सोल्युटली।
0: चलिए, आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की हमने तैयारी की है इंडियन आर्मी के साथ में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो पहनाए जाएंगे। पूरा अनुशासन बनाना।
2: यस। आपको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए है कोई, अगर एक सिचुएशन में कुछ एक्शन हो रहा हो या
3: जैसे हमारे पास जैसे कहीं भी कोई फायर आ रहा है हमारे, तो इस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, हमारे ऊपर फायर डालेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेफली वहाँ तक जाएंगे और उसके ऊपर डायरेक्ट फायर डालेंगे, एम फायर डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सर।
0: आई थिंक एक एक्सपीरियंस हम जरूर उसके ऊपर जाकर भी देखना चाहेंगे, अगर आप परमिशन दें हमें तो।
3: अच्छा, बाहर का व्यू देखिए।
0: ग्राउंड जीरो का रियल एक्सपीरियंस है ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई सेलुलॉइड नहीं है, इट्स रियल एक्सपीरियंस। तो ये सबसे जो डिफिकल्ट टेरेन्स है ये उनमें से, सो नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त हम हैं, नॉर्थ कश्मीर इज लाइक द गेटवे ऑफ कश्मीर,
2: राइट? ऑल थ्री साइड्स वी आर सराउंडेड बाय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट? पीओके एंड दिस वन कॉरिडोर इज ओपन इनटू श्रीनगर, अमेजिंग।
3: सर, यहाँ पर हमारा कैस्पर का जो रास्ता है वो शॉर्ट है, यहाँ से हमारी जिप्सी मूव करेंगी और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो मूव करेगी, तो यहाँ पर हम अपना कैस्पर रोक देंगे, यहाँ से अभी हम डाउन होते हैं। सर
0: चलिए, व्हीकल से उतरने के बाद व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन मुझे लगता है सर चैलेंजेस भी उतने ही हैं, तो हमें बताइए अब अगला स्टेप क्या है यहाँ से।
3: अब यहाँ से हमारा ड्रोन मैन कैमरा वाला यहाँ से पूरा अपना उड़ाएगा ड्रोन और पूरा एरिया सर्च करेगा।
0: आइए बढ़ते हैं आगे। पेट्रोलियम के अगले स्टेप पर हम चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे जिंदगी के इतने विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर कि इतनी खूबसूरत जगह है और हम एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं कि आर्मी के ऑपरेशन इस जगह पर कैसे होते हैं, टेररिस्ट को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है। अभी रिसेंटली क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज़ पर कि बॉर्डर टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया जाए। बॉर्डर टूरिज्म का पर्पज़ भी कहीं ना कहीं ये है कि आपको पता हो कि आपके जवान इस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करते हैं।
2: आई थिंक इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना, दिस आल्सो इज पार्ट ऑफ द थिंग।
0: जितने गाँव हमें आस पास दिखाई दे रहे हैं, चलिए अब ऑन फुट हम जो पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए पैदल चलते हुए जाना और पूरे एरिया को
4: हम डिफ़िकल्टी टास्क के ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इलाका है इसको हम बहुत ही रेगुलरली हम डोमिनेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें हमारे जवानों को इतनी डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज हम उसके लिए हमेशा ट्रेन करते हैं,
0: ट्रेन किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, साथ में घर बने हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गाँव का एक इलाका है और रिमोट एरिया एकदम ये है।
4: ये जो विलेज है ये LC के बहुत पास है, जो भी हमारे पेट्रोल्स जाती हैं उसमें हमें विलेजेस भी मिलते हैं, जंगल के पैचेस भी मिलते हैं, नाले भी मिलते हैं, तो अलग अलग एरिया को हम अलग अलग ड्रिल से सैनिटाइज करते हैं।
2: जैसे हम अभी ऑलमोस्ट रोड पे चल रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहाँ पे चेक करना हो,
4: और साथ में हमारे साथ हमारा ड्रोन ऑपरेटर है, इट्स लाइक ए हॉकआई।
0: ये अभी पूरा जो गांव है, मतलब यहाँ पर ये खेती भी हो रही है, लोगों के घर भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि क्योंकि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं इस वक्त।
2: कितने नज़दीक हैं हम बॉर्डर से?
0: आप
2: 1 किलोमीटर मैन।
0: अच्छा, जो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को कि जो लोग बॉर्डर के इस एरिया में बसे हैं, दे आर इनफैक्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स टू एनीथिंग दैट हैपेंस ओवर देयर।
2: सिविल इंजीनियर।
0: हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि एक तरफ जैसे कारगिल वॉर के समय भी जो पोर्टर्स थे वहाँ पर, या जिन्होंने सामान ऊपर पहुँचाया, जिन्होंने मदद की, और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को
4: इन्फॉर्म किया। यहाँ के जो लोकल्स हैं, गुजर्स भी हैं, खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते हैं।
0: So they are like the army behind the army.
4: बिल्कुल, वो हमारे extension of hand हो गए basically.
0: Was it fire?
4: In actual operations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the firer.
5: We are providing. Now, what whenever happens, this kind of situation happens.
2: Take cover.
5: Take cover.
2: All right.
0: आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर?
5: जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकें, साउंड को लोकेट करते हैं हम किस दिशा से आ रही है, और अपनी ट्रेनिंग सीख हुई ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते
2: हैं। अमेजिंग।
5: अभी हम आगे बढ़ते हैं।
0: ये अभी जो हमने ड्रिल देखा यहाँ पर, ये रील से कितना अलग था?
2: सी, दैट्स वन थिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, फिल्मों में भी रियल गन फायर की जो आवाज़ होती है ना, इतना लाउड, इतना पावरफुल होता है।
0: तो ये हमारी पेट्रोलिंग का आखिरी पॉइंट है सर?
4: ये आखिरी पॉइंट नहीं है,
2: ठीक है,
4: यहाँ एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं आगे टेरेन बहुत मुश्किल है, हमारा पेट्रोल नॉर्मली नाले तक जाता है, आप वो आयरन ब्रिज देख सकते हैं, उसको क्रॉस करके आगे भी जो हमारा डेजिग्नेटेड पोजिशन है वहाँ तक हम पेट्रोल करने जाते हैं। ये नाला वेस्ट की तरफ से अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर से LC है, ये POK से नाला आ रहा है,
0: इस्लामाबाद नाला।
2: वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नो? दिस लुक एट अ नाइस पिकनिक स्पॉट।
0: लेकिन इंसानों के बीच के जो कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, बॉर्डर्स के जो टेंशन्स हैं, वो सब क्या ज़मीन पर सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, ये उसका एक लाइव उदाहरण है। हमको उसमें एक सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ की

0: ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें इस मोड में तो आप कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं। और सेना का यहाँ पर होना और एक पूरा
1: बहुत जरूरी
0: एरिया को प्रोटेक्शन देना
1: बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीनगर पहुंच जाएंगे भाई अगर आपकी आप नहीं थे तो।
2: नहीं पहुंचने देंगे,
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं,
0: ये इंडियन आर्मी। आपने यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट एरिया में पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जिन जवानों के साथ हमने पेट्रोलिंग की वो जवान कैसे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो कैसे, कितनी हार्डशिप्स हैं मौसम से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटरेस्टेड हैं आप ये देखने के लिए?
1: बहुत इंटरेस्टेड हूं, इनफैक्ट
0: ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो हम जिम में पसीना बहाते हैं, ये अलग तरह की फिटनेस है। तो आपको मैं इस वक्त सीधे वहीं लेकर जा रही हूँ, और हमारे साथ सर इस वक्त आ चुके हैं जो हमें इस डेमो को एक्सप्लेन भी करेंगे। वंडरफुल मीटिंग सर,
3: थैंक यू सर। अभी के हिसाब से सब हमने ये पिक्चर पेंट किया है कि जनरल एरिया रेंज,
0: हाँ।
3: रेंज पे एनिमी के 5-6 मिलिटेंट जो कि आके डिफेंस ले चुके हैं। हमारे इंट के मुताबिक हम अभी अपनी जो ग्राउंड सेना है उसको इनिशियल हाँ। हाइड में रखा हुआ है। उससे पहले हमने दो अपने आर्म्ड व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस हैं, पहले हम फर्स्ट अटैक फर्स्ट वेव में उनके ऊपर आर्म्ड व्हीकल के साथ करेंगे, वो दुश्मन उसी टाइम पिन डाउन हो जाएगा। पिन डाउन होने के बाद फिर हम अपनी पैदल सेना को इनिशियल हाइट से निकाल के फॉरवर्ड हाइट 1 फॉरवर्ड हाइट 2 उसके बाद फाइनल असॉल्ट, उसका एक डेमो अभी आपको दिखाएंगे हम। तो शुरू करें सर।
0: जी जी
1: शुरू करो सर।

0: अब इस स्पिन डाउन के बाद जो कि हम आर्म्ड व्हीकल थे उन पे अगर अपोजिशन आती भी है तो इन पे फायर का कोई असर हुआ नहीं। दूसरा, इतना ज़्यादा शॉक एक्शन उसको दे दिया कि वो भी पिन डाउन हो गया।
1: क्या कुछ फायरिंग हम ट्राई कर सकते हैं
0: जी?
1: शेफ सर, आप ट्रेन हैं बचपन से?
2: बचपन से।
1: चलिए देखते हैं।
0: दो गन्स लेके आओ। रेडी, अपने टर्न से टर्न रोड फायर। इसका फायर हो जाए दाने हाथ ऊपर।
1: कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका?
2: That was tiring.
1: Tiring.
2: Somewhat tiring, but exciting.
1: अब ये पता चलता है कि आपने टारगेट्स कितने हिट किए हैं। जरूरी तो रिजल्ट जानना है।
2: यहाँ से लग रहा था कि एक आध लगे।
0: नहीं, टारगेट एरिया में तो है। टारगेट तो पकड़ रखा।
1: 10 और कितने नंबर?
0: अभी हिटिंग पे पता चलेगा।
1: अच्छा, वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि कितना करीब था टारगेट।
0: गोलियां तो लगी हैं आपकी, चाहे डिस्पर्स हो गए, लगी हैं। तो जो इस सर्कल में उसका एक पॉइंट
2: है।
1: जवानों की ट्रेनिंग आपने देख ली, लेकिन आप कुछ
2: स्ट्रॉन्ग जवान,
1: स्पोर्ट एक्टिविटी भी देखी जाए। और क्रिकेट तो आपके खून में है
2: जी। अभी ये मुझे अपने आप को एम्बैरेस करने का फुल चांस है।
1: चलिए, क्रिकेट का फील्ड तैयार है। सैफ सर, ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे आर्मी की फील्डिंग सेट है और सिनेमा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ पटौदी खानदान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
2: भाई धीरे से डालो।
1: कैसा रहा आपका क्रिकेट का एक्सपीरियंस?
2: मुझे लगता है कि दुनिया में से बहुत जो खूबसूरत ग्राउंड्स हैं, ये एक होगा।
1: एंड आर्मी की जो तैयारी है, जो टीम्स हैं, उन सबके अंदर जो एक जज्बा है,
2: इट्स सो नाइस। अगेन, क्रिकेट इज अनदर बॉन्डिंग स्पोर्ट। व्हेन यू प्ले नाउ विद पीपल, इट मेक्स यू रिस्पेक्ट देम ऑन अ डिफरेंट
1: लेवल। तो आज का पूरा दिन कैसा रहा आपका?
2: मुझे बहुत अच्छा, बहुत मजा आया।
1: तो हमारी दिन की एक्टिविटीज का पार्ट यहाँ खत्म होता है, लेकिन जब आपने कहा कि आपको इतना अपनापन महसूस हुआ और यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज आपने की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी, जिसको हम देखेंगे आज की रात में। और उसको जब आप अटेंड करेंगे तो आप अपने साथ बहुत सारी यादें आज लेकर जाने वाले हैं, ये मैं आपको अभी गारंटी कर सकती हूँ। अपने सारे गाने और डांसेस याद है ना?
2: Oh, no. अभी मुझे डर लग रहा है।
1: ऐसा ना हो कि रियल टास्क कब आए आपके सामने।
2: I think that's the scary part. ये सब ठीक था।
1: लेकिन आप मिलेंगे स्टेज पर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं जय जवान कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं, और आपके तालियों की आवाज में एक ताली आप मेरी भी जरूर स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत करें इस कार्यक्रम में। मोस्ट वेलकम। जय जवान कार्यक्रम एनडीटीवी में हमारे लिए एक कार्यक्रम नहीं है, हमारे लिए ये एक अनुभव है, हमारे लिए ये एक एहसास है।

लेकिन आज आजादी के इस जश्न में, अब जब इस मेला में हम आपके साथ मौजूद है और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो आजादी के इस जश्न को और स्पेशल बनाने के लिए हैं, मैं उन्हें वेलकम करना चाहूंगी स्टेज पर और फिर होंगी आपके साथ खूब सारी बातें। तो प्लीज तालियों के साथ स्वागत करिए सैफ अली खान।

0: मैंने कुछ घंटे के लिए आपकी ज़िंदगी आज जी है और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है और हर मुश्किल में आपका जज्बा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली मेरी परिवार और पूरे देश की तरफ से आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आपकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ रहते हैं।
1: मैं मंच पर कुछ जवानों को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने स्पेशली आपके लिए आज इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की है, अपने उन इमोशन को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी लांस नायक अंकित जी को। प्लीज आइए अपनी टीम के साथ, बहुत स्वागत है आपका मंच पर।

0: वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन।
1: एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम पूरी टीम को थैंक यू भी कहेंगे। तो अब स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिपॉय साहिल नैन जी को, और उन्होंने आज एक परफॉर्मेंस तैयार किया है।
2: Okay.
1: How excited you are for that performance?
2: I'm very excited to see.
1: और ऐसा लग रहा है कि आप ही की फिल्म का कोई गाना है।

0: बहुत खूब,
1: बहुत खूब भाई।
0: भाई तालियां तो नहीं सुनाई दी हैं, क्योंकि जिस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ है तो यूजुअली होता है क्या, हम लोग कहते हैं नहला था या दहला था, तो नहले पर दहला था। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल मुझे और पूछना है, सैफ अली खान के सामने उन्हीं के डांस को आपको उन्हीं के अंदाज में करना है, ये तो बट कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, इसे तो मानना पड़ेगा।
2: यस मैम।
1: अरे यस मैम, नहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने।
0: आपने जब आप जब इन्हें परफॉर्म करते हुए देखे थे, आपको क्या अपना पूरा शूट याद तो नहीं आ रहा था उस समय?
1: मुझे वो शूट याद आया।
0: Anything interesting that
1: but
0: you want
1: no,
0: to share?
1: The shoot was interesting. वो गाना इतना अच्छा था, लेकिन कोरियोग्राफर ने कहा कि कुछ मूव्स बताए, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से करो।
0: हाँ।
1: तो वो ऐसी बना, और अगर आपने मतलब
0: ऑन द स्पॉट मेकअप किया, आप ही हैं।
1: आपने देखा वो शुरू होता है वो विस्की ग्लास के साथ, वो इतना फेमस हो गया एनिमल में, जो बॉबी डियोल ने सीन किया था, लेकिन एक्चुअली वो इस गाने में था सबसे पहले। So that was the
0: trendsetter, huh?
1: Trendsetter.
0: Thank you so much, sir. Thank you. And all the very best.
1: All the best.
0: डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, अब थोड़े से क्यू एंड ए करते हैं, कुछ सवाल जवाब। आप सब लोग तैयार हैं कुछ सवाल जवाबों के लिए? और क्वेश्चन आंसर में आपकी रियल लाइफ से लेकर, आपकी रियल लाइफ से लेकर आपके एक्सपीरियंसेस पर ये सारे क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए खास तौर पर हमने कुछ येस और नो प्रिपेयर किया है। कौन सा हाँ है, किस सवाल का जवाब, किस सवाल का जवाब ना है। आप लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ? जयदीप जी, प्रवीण जी, शिवम जी और दीपक जी,
3: गुड इवनिंग जी।
0: गुड इवनिंग।
3: ये एक बैठे बैठे सवाल याद आ गया। क्या आपको कभी किसी रोल या शो को मना करने के बाद में आपको पछतावा मिला है?
0: कभी किसी रोल या किसी शो?
1: I understood. हाँ।
0: Yes or no? No, no, but you have to show the black card. Yes.
1: Yes, शायद
3: या। Yes.
0: दीपक जी आप हैं यहाँ पर अभी?
4: जी।
0: Okay, he's here.
4: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग
4: साहब। सर सवाल आपसे है कि क्या पहली नजर में प्यार हो सकता है?
0: यस और नो? आई थिंक यस।
1: यस आई थिंक सो। हाँ आई थिंक सो। लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टू फॉल इन लव, मतलब प्यार में गिरना।
4: जी सर,
1: इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल नहीं होता, मतलब अपने बस में नहीं होती बात।
4: जी सर,
1: तो आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें रहना, उसको निभाना, ये मर्दों वाली बात है।
0: नहीं, लेकिन एक चीज बताइए आप पहले
1: जी।
0: ये जो पहली नजर का प्यार जिसको आपने यस कहा है, ये आपको कौन सी उम्र में हुआ था?
1: वो तो बहुत रिसेंटली हुआ।
0: बहुत रिसेंटली?
1: यस आई मीन क्या अभी एक्चुअली हो गए?
0: रिसेंटली तो नहीं है।
1: नो नो, विद माय या इट्स बीन गॉड, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 इयर्स विद माय वाइफ।
0: यस, इट्स प्लेइंग सेफ।
1: Of course, always safe.
3: Big hands up, Karina.
1: Thank you. Yes. And she is also a huge supporter of the army.
4: Yes. Thank you, sir.
1: She's very happy I'm here. And unki taraf se lots of love to all of you.
4: Thank you, sir.
1: Yes.
5: Jai Hind, sir.
1: Jai Hind.
0: Jai Hind.
5: Welcome to Uri, sir.
1: Thank you.
5: सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस बढ़ती उम्र में आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? क्योंकि आर्मी में फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ टिप्स बताइए कि आप हमारी आर्मी को भी।
1: भाई मैं अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डाल देता हूं जैसे जय जवान, जहां मुझे पहाड़ों पे चढ़ना पड़े और बड़ी बड़ी मशीन गन्स चलाना पड़े, तो आदमी को फिट रहना चाहिए। नहीं, आई थिंक सबके साथ फिटनेस का दौर चल रहा है आजकल, और एज हम सिर्फ एक नंबर मानते हैं जैसे कहते हैं लोग, और अच्छा खाना खाना, डाइट, हेल्थी खाना खाना, एक्सरसाइज करना और फिट रहना, और ड्रिंक्स पे एकदम कंट्रोल करना।
0: आइए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और एक और डांस परफॉर्मेंस सैफ सर की एक और फिल्म से यहाँ पर, जिस गाने से आप आज दिन भर डर रहे थे, अब नंबर उस गाने का है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नायक अर्जुन और उनकी टीम को। आइए, बहुत स्वागत है आपका।

0: ओले भी बरस गए, बर्फ भी बरस गई, मुझे लगता है सब बरस गया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा आपका, थैंक यू सो मच।
1: वेल डन, कांग्रेचुलेशंस।
0: अगला है परफॉर्मेंस
1: जी,
0: और इस परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार गजेंद्र और उनकी टीम को। आइए सब, वेलकम ऑन स्टेज।

0: सॉरी मैंने आपका गाना बिगाड़ा। अपने
1: बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर टीम फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। दिल चाहता है।
2: थैंक यू
0: सो गुड।
1: तमंचे पर डिस्को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार अरुण रोआ और उनकी टीम को। आइए प्लीज।

कमंचे पर डिस्को आपने जो करके दिखाया है अभी, एकदम महफिल को आपने ऐसे रेडी कर दिया है कि जिसके बाद हम नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाएंगे। तो हम लोगों का हमेशा जब भी ये कार्यक्रम होता है जय जवान का, महफिल खत्म हमेशा आते आते भांगड़े पर जाती है। पंजाब की वाइब के बिना तो पार्टी अधूरी है, है या नहीं है बताइए। हाँ, पंजाब की वाइब के बिना पार्टी अधूरी है, नहीं है? भांगड़ा भांगड़ा देखना है आप।

किस किस को देखना है? मुझे पीछे से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं बुलाऊंगी नहीं स्टेज पे। थैंक यू सो मच, अगली टीम को स्टेज पर इनवाइट करूंगी। और भांगड़ा परफॉर्मेंस के लिए नायक अजय जी और आपकी टीम प्लीज आइए स्टेज पर।

0: बहुत खूब, आज तो पूरी बॉयज पार्टी हो गई है यहाँ.
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. बहुत खूब, कंग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे.
0: आपका परफॉर्मेंस ने तो एकदम बिल्कुल चार चांद लगा दी हमारे आज की महफिल पर. और आपको मैं देख रही हूँ, आप हर डांस में आपने परफॉर्म किया है.
2: पता था, हम खून में
0: हैं. चलिए, ये परंपरा आगे भी ऐसी चलती रहे, यही मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए.
1: थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
0: जवानों के बीच में जब आप हों तो उसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उस पल के लिए, उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए आप भी जवान हो जाते हैं. तो हमें जवान बनने का ये मौका देने के लिए, इसे मैं यूथ के एंगल से नहीं कह रही हूँ, जय जवान के एंगल से कह रही हूँ, हमें अपने बीच होकर जवान फील कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की इस खास अवसर पर, आज इस कार्यक्रम में, इस सफ़र पर हम लेंगे विराम, लेकिन इस स्पिरिट के साथ कि आपके पास जब जब आने का मौका मिलेगा, हर बार आएंगे आपसे नया कुछ सीखने के लिए, आपके साथ नया वक्त शेयर करने के लिए. और सैफ सर,
1: तो जाते जाते आप सबके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जो आई थिंक आप लोगों के लिए परफेक्ट है. कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं.
0: क्या बात है.
1: Right?
0: And
1: right.
0: That's our Indian Army.
1: Really, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना प्यार मिला आपसे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में. All the very best, lots of love from all of us to all of you. Okay? Bless you.
0: Thank you so much. Thank you.
3: Clap.
1: बोले clap. I love this clap. I'm gonna miss it. अगर पट्टी गई तो
4: कैसे जवाब दूँ?
1: No budget film. Bother me. You can sit on underneath the tree and just direct us. Hey, ek aur karo, ek aur karo. See you. Too loud. मैं protection चाहिए ना.

नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: Hello and a very warm welcome, viewers. A very happy Independence Day. You're watching NDTV because always we bring you grit over gloss. Let's get you the top headlines from the Red Fort where Independence Day was marked and from across the country. Modi's big Yuva pitch on Independence Day says youth of India are the key to Viksit Bharat 2047. Prime Minister urges young Indians to come forward with their dreams while announcing AI skilling for 1 crore youth. Prime Minister Modi warns Dimagi Naxal, says while Naxalism is weakening, some people still carry a Naxal mindset, asserts Dimagi Naxals need to be identified and isolated to prevent ideology from spreading. Prime Minister Modi's big appeal to the opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister asks all political parties to support 33% reservation for women, urges them to come forward and back women's quota. Listing out the 7 streams, Prime Minister Modi says manufacturing, farming, technology, Gati Shakti, Raksha Shakti and green energy as well as the soft power are India's Saptadhara. Chief Minister Vijay hoists tricolour at Fort St. George in first Independence Day ceremony as the Chief Minister of Tamil Nadu. Trisha Krishnan attends Independence Day celebrations. And Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address from the Red Fort has warned that while Red Terror has been defeated, across the Red Corridor, Dimagi Naxals are still present around us, calling for them to be identified and isolated. At the same time, the Prime Minister put youth at the heart of the Viksit Bharat vision, saying India prioritizes its Yuva Shakti. He announced AI skills training for 1 crore young people, free online coaching and a nationwide sports talent hunt for children aged between 5 and 15. Modi also highlighted the expansion of the universities and medical seats, saying the youth are the biggest beneficiaries of India's progress. Let's listen in to Prime Minister Modi at the Red Fort.
1: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे. सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था. मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है. लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
2: विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं. उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है. युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है. 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको. 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है. करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं. 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 800 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है।
0: While you heard the Prime Minister Narendra Modi chart out the next course of action and what India will look like, the opposition hasn't stopped reacting. Let's listen in to the opposition reactions that are also coming in.
3: अभी नए नए शब्दों का आज आविष्कार हो रहा है, कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नक्सली है, और ये मुझे लगता है एक शोभा नहीं देता आज के समय पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का। और ये जो किया है, ये कहीं ना कहीं भड़ास निकल रही है, जो नौजवानों में आज आक्रोश पैदा हुआ है सरकार के खिलाफ, शायद उसका परिणाम है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है।
4: राइटर्स, ऑथर्स, एवरीबॉडी इज ए नक्सल, व्हाट डू मीन बाय दैट? सो फर्स्ट ही शुड डिस्क्राइब दिस फ्रेज, व्हाट इज दिमागी नक्सल? यू ही हैज पेंटेड द सेम ब्रश ऑल पीपल हु आर एजुकेटेड इन दिस कंट्री। All those who think, all those who raise voices, all those who try to speak against government, he has called them Naxal. I think these kind of words should not be used from the Red Fort, because it's for the entire country.
5: एक नई बात प्रधानमंत्री ने की, उन्होंने दिमागी नक्सली शब्द का जिक्र किया और कहा कि ऐसे लोगों को अलग थलग करने की जरूरत है। ये अर्बन नक्सल पहले कहा जाता था, अब दिमागी नक्सली का शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया।
6: मैं फिर कह रही हूँ, इतिहास में ये भाषण लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्रियों के इतिहास बन जाते हैं। वहाँ आकर ये दुश्मनों को, सरहद पार जो दुश्मन बैठा है, आतंकी नक्सली जो इस देश में है, उनको हिट नहीं करते हैं। ये अपने ही देश के, अपने ही लोकतंत्र में, अपने ही विपक्ष में जो लोकतंत्र में खड़ा है, उनको दबाने के लिए, उनके लिए ये शब्दों का इस्तेमाल देश का प्रधानमंत्री करता है। तो समझ आता है कि दुश्मन तो दुश्मन है, जो दोस्त हैं, जो अपने हैं, जो भारत में हैं, उनको भी आप अपना दुश्मन बना रहे हैं, जो भारत की विचारधारा में नहीं है।
0: And on Prime Minister's speech at the Red Fort, there's a big controversy now breaking up. Breaking news coming in. Pawan Khera of the Congress Party on Prime Minister Modi's Dimagi Naxals remark. He says, and I quote, they end up heeding the very people they label Naxals. They accepted the farmers' demands and had to bow down to the youth. They bow before the very people they otherwise abuse. Focus on the youth. Talk the youth does not suit them. Their true colors have been exposed. This is Congress's Pawan Khera now attacking Prime Minister Narendra Modi minutes after the Prime Minister's historic speech at the Red Fort. Let's listen in to what Pawan Khera had to say.
7: जिनको ये नक्सल कहते हैं आज, उन्हीं की बात कल मान लेते हैं। किसानों की बात मान ली, नौजवानों की बात माननी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो ये जिसको भी गाली देते हैं उसके बाद उन्हीं के आगे नतमस्तक होते हैं।
0: So you heard Pawan Khera now attacking the Prime Minister and the BJP government at the center. We have Aishwarya Jain joining us live on this broadcast from this fresh controversy brewing. Prime Minister has been attacking the mindset that pushes this Naxal or Maoist mindset, Aishwarya. And this is something that the BJP has continuously spoken about. The urban Naxals, they say, are still prevalent even as Naxals in Red Corridor have been put into history. How is the reaction coming in from the opposition, and how is the BJP now looking at it?
8: Well, the Congress has hit out at Prime Minister's remarks of the Dimagi Naxal. Pawan Khera, the Congress leader, clearly is stating that first they called the farmers as Naxals, then they had to agree to their demands. They also called the youth Naxals, and they had to ask Dharmendra Pradhan to resign. Certainly, it was Prime Minister Narendra Modi who had earlier stated from the ramparts of Red Fort that and slammed that Dimagi Naxals during 13th consecutive address. He said that such elements must be eliminated and isolated while urging efforts to bring youth into mainstream as well. Prime Minister Narendra Modi there after making that remark, Congress party had slammed the Prime Minister's remarks and stated that it is government's true colors which have been exposed now after the Prime Minister's remarks. Earlier, this is the government which called the opposition as urban Naxals, and now they are calling as Dimagi Naxals, to which the Congress party clearly stated that this shows a clear desperation on the part of Prime Minister.
0: All right. There is a fresh controversy brewing on Prime Minister Narendra Modi's remarks against the urban Naxals, and also suggesting that there is Dimagi Naxals that are very much prevalent, perhaps in cities, even as the real problem of Naxalism and Maoism is almost over from the Red Corridor. Aishwarya, thank you very much for joining us. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has made a fresh push for Women's Reservation Bill from the Red Fort during his address to the nation. Prime Minister called on all political parties to come out in support of women's reservation and ensure that the quota is implemented. Prime Minister Narendra Modi said women must be given their rightful place in politics and urged the opposition to join the effort. The Prime Minister also appealed to all political parties to support the move, saying women's reservation and representation is not a matter of one party, but a national priority. Let's listen into what Prime Minister Narendra Modi had to say, even as there is politics that is erupting on this.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है. फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है. खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही. स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है. आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है. सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है. मैं पिछले दिनों सांणंद में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी. वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था. वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस. मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था. आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया. अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं. 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है.
0: Meanwhile, politics has erupted over Prime Minister Narendra Modi's push for Women's Reservation Bill. Opposition has slammed Prime Minister Modi after he urged political parties to come together and pass the Women's Reservation Bill. That's a debate that's been pending for a very long time. Congress has slammed Prime Minister Modi and said that if Prime Minister is concerned about women's reservation, it should have been implemented by now. They also stated that Congress has already given mandate for Women's Reservation Bill in 2023 and BJP should have been implementing this immediately now.
7: Yeah, outgoing Prime Minister hai. Sonia ji ne kab chitthi likhi thi mahila arakshan ki? Yaad hai inko? Kaun mahila arakshan ka sabse bada aaj agar koi hai pioneer is desh mein to kaun hai? Sonia Gandhi hai. Agar inki niyat mein mahila arakshan hota to 2023 se 26 tak kya baithe hote us par bill par? Notify kab hua? 26 mein hua. Pass kab hua? 2023 mein hua. 3 saal

0: क्या कर रहे थे, ये अपनी निष्ठा दिखा रहे थे महिला आरक्षण के प्रति, तो इनको छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं ना आपको, आउटगोइंग पीएम है, अब इनकमिंग की बात करिए।
1: Prime Minister Narendra Modi has laid out a broad blueprint for a self-reliant and developed India by 2047, saying Atmanirbharta is the conviction behind Viksit Bharat as India races to become the world's fastest growing major economy. The vision spans seven pillars from manufacturing, agriculture and technology to Gati Shakti, defense, self-reliance, the green and the blue economy and India's global soft power. Energy security also takes the center stage, with the Prime Minister targeting 100 gigawatts of nuclear power and 5 new reactors, stressing the growing energy needs of chips, AI and data centers as well. And the larger message, India must dream bigger and turn those dreams into the national resolve. Let's listen in.
2: Atmavishwas ki jarurat hoti hai, atmagaurav ki jarurat hoti hai. और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है।
1: And even as we've been bringing you news on Independence Day, there's more breaking news coming in. Vande Mataram sung in full at the All India Congress Committee headquarters. Sonia Gandhi Mallikarjun Kharge intervene. The full rendition, that's what the BJP is saying. The BJP says Sonia insulted national song. The BJP is now hitting out at the Congress High Command, saying shame on Congress leadership. Amit Malviya slams the Congress party, saying for the first time, the entire Vande Mataram was sung at the Congress headquarters on the Independence Day. After the initial stanzas of Vande Mataram were sung, Sonia Gandhi became agitated and asked for the rendition to be stopped rather than played in full. Rahul Gandhi too appeared to signal that it should end. They were told to let it continue. The message was clear. The complete national song is now to be respected under the new legal framework, and the intentional obstruction or disturbance can invite serious consequences. They eventually fell in line and Vande Mataram was sung in full. For decades, the Gandhis and the Congress have displayed an uneasy relationship with the idea of a culturally confident, civilizationally rooted India. And this is what Amit Malviya of the BJP is saying, hitting out at the Congress party, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Kharge. These are the visuals that are coming on your screens from that Independence Day celebration at the Congress headquarters. Let's listen into Amit Malviya and what he is saying on the Congress party.
3: लाल किला पर बंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया, हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य,
4: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, अब मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए,
3: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास
4: जी,
3: तो कार्रवाई तो होगी।
5: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
0: 1937, 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट, जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन, वंदे मातरम का वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
6: लेकिन आज तो पूरा बजा
0: कह रहा हूँ, चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
1: Well, that's all we have. India at 80, the massive coverage here on NDTV continues all through the day. Keep watching and trust in a new light.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: Hello and a very good afternoon, viewers. A very happy Independence Day from the NDTV Parivar to you all. It's always sense over sensation and in fact grit over any kind of gloss here on NDTV. But first, let's get you the top headlines from across the country. Modi's big Yuva pitch on Independence Day says youth of India are the key to Viksit Bharat 2047. Prime Minister urges young Indians to come forward with their dreams for announcing AI skilling for 1 crore youth. Prime Minister Narendra Modi warns Dimagi Naxal, says while Naxalism is weakening, some people still carry a Naxal mindset, asserts Dimagi Naxals need to be identified and isolated to prevent ideology from spreading. Prime Minister Narendra Modi's big appeal to opposition from the ramparts of the Red Fort. Prime Minister asks all political parties to support 33% reservation for women, urges them to come forward and back women's quota. Listing out the seven streams, Prime Minister Narendra Modi says manufacturing, farming technology, Gati Shakti, Raksha Shakti, green energy and soft power are India's Saptdhara. CM Vijay hoists tricolour at Font St. George in the very first Independence Day ceremony as Chief Minister of Tamil Nadu. Trisha Krishnan also attends the Independence Day celebrations. And beginning this bulletin from the big moment at the Red Fort in New Delhi, India at 80. But Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address from the Red Fort has warned that while Red Terror has been defeated, Dimagi Naxals are still present around us, calling for them to be identified and isolated. At the same time, the Prime Minister put youth at the heart of his Viksit Bharat vision, saying India prioritizes its Yuva Shakti. He announced AI skills training for 1 crore young people, free online coaching and a nationwide sports talent hunt for children in the age group of 5 to 15. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats, saying the youth are the biggest beneficiaries of India's progress. And that is Prime Minister Modi speaking at India at 80 this morning at the Red Fort.
1: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे. सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था. मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है. लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा.
2: विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं. उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है. विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है. युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है. 2004 से 14 आंकड़ा मुझे देना चाहिए आपको. 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी हैं.
1: करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 800 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश को नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है।
0: And you heard Prime Minister Narendra Modi there speaking from the ramparts of the Red Fort. But that hasn't actually ended the opposition from reacting and trading charges at the BJP government and the Prime Minister. Let's listen in to the opposition reactions that are coming in.
3: भी नए नए शब्दों का आज आविष्कार हो रहा है, कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नक्सली है, और ये मुझे लगता है एक शोभा नहीं देता आज के समय पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का। और ये जो किया है ये कहीं ना कहीं भड़ास निकल रही है, जो नौजवानों में आज आक्रोश पैदा हुआ है सरकार के खिलाफ, शायद उसका परिणाम है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है।
4: जिनको ये नक्सल कहते हैं आज, उन्हीं की बात कल मान लेते हैं। किसानों की बात मान ली, नौजवानों की बात माननी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, तो ये जिसको भी गाली देते हैं उसके बाद उन्हीं के आगे नतमस्तक होते हैं।
5: This is about serious if his intentions are on the youth and students and all those intellectual the future of our country. If the students of our country raise questions, if the youth of the country point fingers at the government and the failures of the government, and the youth of the country join together and raise their voice, if the Prime Minister of the country feels that they are Naxals, that is not acceptable. Our youth, our students have the right to voice their intellectual capacity. They have the right to think. They have the capacity to think. And when they can think, they will voice their opinion. Nobody can stop them. They will continue to be India's voice.
0: Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has made a fresh push for women's reservation bill from Red Fort during his address to the nation. Prime Minister called on all political parties to come out in support of women's reservation and ensure that the quota is implemented. Prime Minister Modi said women must be given their rightful place in politics and urged the opposition to join the effort. The Prime Minister also appealed to all political parties to support the move, saying women's reservation and representation is not a matter of one party but a national priority. Let's listen in to Prime Minister Modi.
1: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था।

0: लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेल कूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बच्चियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी है। सर, मेरी बेटियों की ताकत कैसी है। मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
1: You heard the Prime Minister there. There was Vande Mataram for the first time sung from the ramparts of the Red Fort. The opposition has hit out and now Sudhanshu Trivedi is live speaking on the issue.
2: In the history of India, but at this time we have seen a very ugly movement when in the head office of the Congress party, it was seen that their supreme leader, Srimati Sonia Gandhi, their super president, Rahul Gandhi, and sitting president, Mallikarjun Khadge ji, while it was being sung, they were not attentive. Rather than, they were casually talking to each other, giving remarks to each other, even calling someone. This shows the utter disrespect by Congress party towards the national song Vande Mataram. This shows that Congress party has not yet accepted the complete and wholeheartedly accepted the full form of Vande Mataram. So we strongly condemn this deplorable act of the top leadership of Congress party, and we urge an apology from the Congress party and a clarification from there for their this peculiar and deplorable act. And if they do not do so, this shows that their true faith and allegiance to the constitution, their dedication to the nation, and their respect towards the freedom fight is under suspicion and under the grave question.
1: That was Sudhanshu Trivedi, BJP leader, hitting out at the Congress party over the entire issue of the Vande Mataram that was sung for the first time, not just from the Red Fort, from the headquarters of the Congress party as well. And while the Vande Mataram was being sung at the Congress party headquarters at that time, there was some verbal chatter between Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi as well. Now, the BJP is attacking the Congress party and saying that this entire controversy developed because the Congress party was uncomfortable with the Vande Mataram being sung beyond the second paragraph, while the Congress party and Jairam Ramesh have come out and said that this is completely wrong and this was only because Sonia Gandhi had requested Mallikarjun Kharge to sit because he had been standing for a very long time and they were trying to get a seat for them. But there was no chair visible in that entire conversation. So the political slugfest continues between the Congress and the BJP. These are the other reactions that we are picking up on this issue.
3: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य।
4: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, अब मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
3: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो जी, तो कार्रवाई तो होगी।
5: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
6: 37-28 अक्टूबर कलकत्ता का सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
7: लेकिन आज तो पूरा बजा है,
6: कह रहा हूँ चलाना चाहिए।
8: कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं हुआ है। ये बात आपको कांग्रेस के हाईकमान के लोग या जनरल रमेश जी अपना भी आपको बता देंगे कि एक्चुअल में कांग्रेस का क्या अप्रोच रहेगा।
9: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पे जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
7: तो बीच में एक कांग्रेस नेतृत्व,
9: मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादर वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादर वतन है, तो हम उस मादर वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
1: And on Independence Day, there's more breaking news coming in, this time from Jharkhand. Independence Day crackdown in Jharkhand. Devendra Mahato confined to the hospital. Student says family being threatened by the cops. It's a big allegation against the Jharkhand police and the Jharkhand government by Mahato. Mahato's video of being forcibly removed is being witnessed right now. This is the latest video that NDTV has seen, and this is being brought by the local NDTV reporters on to you. This is Mahato, who is the centerpiece of this entire agitation led by the students, led by the Gen Z, against the policies, against the corruption and against the mismanagement with the examination system in Jharkhand. For days and weeks together, this protest has been underway, but there hasn't been a resolution yet. And now Mahato, who wanted to participate in the Independence Day function at the protest site, is being physically stopped. You can see the confrontation video between the student protesters and the security forces out there in the hospital. Now Mahato forcibly has been confined to the hospital premises. You can see

0: Mahato being physically removed in this video, even as he's holding the tricolor, and he's saying, along with other students, he wants to, in fact, hoist the tricolor. Let's get this entire video for our viewers. This is the entire sequence this happened, and this should embarrass us, this should shame us on a day of Independence Day. Let's take a look. All right, this is concerning. This is something that was not expected. But in Jharkhand, there's been a massive crackdown against Devendra Mahato, who has been confined to the hospital. Earlier video had surfaced when Mahato was requesting the hospital administration and the security forces deployed there to, in fact, be allowed to go to the protest site to hoist the Indian tricolor on the Independence Day. And now Mahato says that his family is being threatened, and he himself in this video can be seen physically being assaulted by the local cops in this entire matter. So the question really is that, why this kind of a physical action was witnessed at the Sadar Hospital. And joining us live to discuss more is Somu Anand, NDTV's correspondent from Ranchi in Jharkhand. Somu, kya aap hame bata sakte hain kya waqia ye hua? Kyunki Devendra Mahato to keh rahe the ki main झंडा लहराने के लिए वहां जाना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जबरन उनको जो है कमरे में बंद कर रहे हैं अस्पताल के।
1: बिल्कुल, देखिए, आज छात्रों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और देवेंद्र महतो उसी में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे। प्रशासन की तरफ से पहले यह दलील दी गई कि उनकी तबीयत सही नहीं, इसलिए उनको नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरी तबीयत सही है और मैं जिस तरह से पहले प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था उसी तरह से तिरंगा यात्रा में भी शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस के जवान, जैसा कि हम वीडियोज में देख पा रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनको चोटें भी आई हैं। देवेंद्र महतो ने बाद में पुलिस वालों पर यह आरोप भी लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और इस दौरान उनकी छाती में चोटें भी आई हैं। वो साफ तौर पर बस ये कह रहे थे कि जिस तरह से छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली है, वे उसमें शामिल होंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि पिछले दो सप्ताह से अधिक का वक्त हो रहा है जब वो अनशन पर हैं और उनके तमाम साथी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बात को लेकर के आज भी तिरंगा यात्रा में वो शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें अस्पताल से बाहर नहीं जाने दिया।
0: सोमू, हमारे साथ बने रहे क्योंकि ये बहुत ही अब जो है जो दृश्य आ रहे हैं ये गलत है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो ये दृश्य हमारे को देखने को मिल रहे हैं कि आज के जेंजी, आज के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है और झारखंड की सरकार ऐसा कर रही है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि महतो कह रहे हैं कि उनके परिवार को जो है धमकियां मिल रही हैं। आगे की कार्रवाई जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं क्या कह रहे हैं कि क्या करेंगे?
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने साफ कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगों पर सरकार सहमत नहीं होती है उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तिरंगा यात्रा निकली है, आगे वो मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी उन्होंने ऐलान किया है, तो ये प्रदर्शन अभी और ज्यादा खिंच रहा है। और साफ तौर पर छात्रों का ये कहना है कि जिस तरीके से दूसरे छात्रों को भी और खासतौर पर जो एक्टिविस्ट इसमें शामिल हैं उनको जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं और उनके परिवार वालों को जिस कदर परेशान किया जा रहा है, इससे वे डरेंगे नहीं, अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
0: जी, आंदोलन जारी रहेगा। दोज आर वेरी कंसर्निंग विजुअल्स कमिंग अक्रॉस फ्रॉम रांची इन झारखंड, वेयर इनसाइड द हॉस्पिटल देवेंद्र महतो, द फेस ऑफ द प्रोटेस्ट इन झारखंड, हैज बीन कन्फाइंड टू द हॉस्पिटल, फिजिकली असॉल्टेड एज वेल। बट विल देयर बी सम कोर्स करेक्शन और अपोलॉजी इशूड बाय द गवर्नमेंट, वील हैव टू वेट एंड वॉच। नाउ मीनवाइल, सिख प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़, एंड दिस इज द लेटेस्ट दैट वी आर पिकिंग अप। प्रोटेस्टर्स सीक रिलीज ऑफ जेल सिख प्रिजनर्स, वाटर कैनन फायर्ड ऑन द प्रोटेस्टर्स एज वेल, tear gas used, protesters are turning violent in Chandigarh. Now viewers, this is the latest visual that is coming on your screen from Chandigarh, not very far from the national capital Delhi. The protesters have turned violent. Sikh protesters stormed the streets of Chandigarh and they are demanding and seeking the release of the jailed Sikh prisoners. We'll keep a very close watch on that story. And it's time to head for a short break here on NDTV, but news and special programming continues all through the day. It's a very happy Independence Day to you and us all, but till then, trust the new light.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: लंबे

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
2: ऑक्सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम?

0: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
1: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: नमस्कार और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है। आजादी का मतलब हर किसी के लिए अलग है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आजादी की जो अभी भी अधूरी है, बीमारी से आजादी, और एक ऐसे माहौल से आजादी जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाए।
1: बिल्कुल आयुष्मान, फ्रीडम इज नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, इट्स आल्सो फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, पुअर सैनिटेशन एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और आयुष्मान, आज हमारे 12th ईयर जो हमारा फिनाले है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, यहाँ पे बच्चे आए

0: करेंगे, वी विल हैव सम फन एक्टिविटीज़, बट मोर इम्पोर्टेंटली आयुष्मान, आज हमारे जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे आर गोना बी गेस्ट हू बीन पार्ट ऑफ अ कैंपेन सिंस 2014, सो दे प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. तो कुछ मजे भी करेंगे हम, कुछ सीखेंगे. वी हैव सम स्पेशल गेस्ट ऑल्सो जॉइनिंग अस टुडे. लेकिन लेट्स लुक एट सम नंबर्स, राइट, बिकॉज फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, नंबर्स आर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स लुक एट द गुड न्यूज फर्स्ट. द लेटेस्ट NFHS 6 रिपोर्ट सेज दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेन्स केम इन द सेक्टर ऑफ चाइल्ड हेल्थ. स्टंटिंग इज डाउन बाय 17%, सिवियर वेस्टिंग इज ऑल्सो डाउन बाय 32%, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर एट over 90%, and full immunization coverage for children aged 12 to 23 months rose to over 87%.
1: Lekin challenges abhi bhi hain. NFHS 6 indicates a dual public health burden. Obesity. In 3 years, it had grown from 22.9% to 27.3% among men, while among women from 24% to 30.7%. Remains problematic while malnutrition continues besides the onslaught of lifestyle diseases.
0: Absolutely, and these numbers are only going up. Unfortunately, this survey, Ayushman, also shows a decline in exclusive breastfeeding among children under 6 months, 63.7%, which was in NFHS 5, it's gone, you know, down now in NFHS 6 to 55.8%. Now, we need to understand that breastfeeding is essential to prevent infant malnutrition, because jab bachcha the first 1,000 days hai, the first 6 months are very critical for a child's growth in every aspect of their life.
1: Absolutely. Independence Day par aaj hum baat karenge solutions ki. Dettol banega Swasth India. Pichle 12 saal se sirf ek campaign nahi, एक मूवमेंट रहा है.
0: और बिकॉज ये एक मूवमेंट है, आइए हम सुनते हैं लोगों से, हमारे देश की जनता से, कि आजादी का मतलब उनके लिए क्या है.
2: मेरे लिए फ्रीडम है कि मैं अक्टूबर नवंबर में भी दिल्ली जैसे शहर में आराम से घूम पाऊँ, एक साफ एयर हो मेरे लिए.
3: आजादी का मतलब हाइजीन के हिसाब से मैं बोलूँगी, साफ पानी.
4: If we talk about health and hygiene, so the basic freedom we all need is the cleanliness of a hospital and roads and water, as it is the basic aspect and necessity of our life.
5: Free basic healthcare and safe private toilets.
6: Yeah, actually we need the good segregation of waste.
7: For me, it's free sanitary pads.
8: For me, hygiene means be safe in every washroom, and this is what matters to me a lot.
9: What I believe is कि जो हम सैनिटेशन पैड्स वगैरह खरीदते, आई डोंट वांट कि वी हैव टू बी सो कॉन्शियस कि हम उसको एक न्यूज़पेपर में लपेट के ला रहे हैं या फिर कवरिंग इट इन अ ब्लैक पॉलिथिन.
10: हमें आसपास खुद सबसे पहले इनिशिएट लेना चाहिए कि हम खुद ही साफ सफाई रखें.
11: हेल्थ मीन्स टू मी फ्रीडम टू मूव. इफ आई कैन मूव फ्रीली द वे आई वांट, माय बॉडी इज सपोर्टिंग मी, दैट इज हेल्दी फॉर मी.
12: द फैक्ट दैट आई कैन one day just get up and say that okay, I'm somewhere outside and I can just go use a public restroom, I don't think I can ever do that.
13: So freedom in our healthcare is like making our environment clean and maintaining our personal hygiene.
14: It means having the facility of clean toilets everywhere I go and free sanitary pads, that's all.
0: NDTV Dettol बनेगा स्वस्थ इंडिया सीजन 12वें सीजन के फिनाले में आप सबका स्वागत है. अब इस सफर को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान जुड़ेंगे जो इस कैंपेन का एक इंटेग्रल हिस्सा रह चुके हैं. आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर नीलम क्लेयर. इनफैक्ट शी इज अ प्रोफेसर, शी इज एन एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूनेटोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू डेली. शी इज ऑल्सो बिन अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण. साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पद्मश्री अवॉर्डी साई दामोदरन. इज द फाउंडर ऑफ ग्रामालय. Another integral guest who's been part of our campaign, I would like to call upon Neha Dhupia. She's an actor, mother, entrepreneur, and founder of Freedom to Feed. And also joining us today is Mr. Ravi Bhatnagar, Communications and Corporate Affairs Director, South Asia, MENARP, and Africa Record. It's really a pleasure to have you all with us. Thank you all so much. In fact, of course, Ravi we have, he's been part of the campaign. Neha has been an integral part. Of course, we have, it's a pleasure to have you with us, Dr. Claire and Mr. Sai Damodaran, you know, integral part when we talk about towards a healthier and a Swachh Bharat. Neha, I want to begin with you. You've been an integral part of our campaign. And of course, we've spoken about Freedom to Feed. You know, we just saw the numbers when we talk about the NFHS 6, that breastfeeding rates have gone down. What changes have you seen? Because it's been nearly 10 years, 2019, you started, Freedom to Feed. When you talk about awareness, acceptance of breastfeeding, while numbers are down, what is the impact you've seen on ground?
15: You know, I think that, firstly, I'm just really

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
4: तंबी कैसे?

0: हैं जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में हैं, उन पे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, और उनकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस. बट इवन जो बच्चे हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, अगर क्लिनिनेस नहीं होती है, क्लिनिनेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेबर रूम में, आफ्टरवर्ड्स, इफ़ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर नॉट वॉशिंग हैंड, इफ़ द वुमेन आर नॉट वॉशिंग हैंड्स, दे आर नॉट हाइजीनिक, दे आर नॉट टेकिंग बाथ. अनदर थिंग विच इज़ प्रिडिस्पोजिंग इज इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ सिजेरियंस. सिजेरियन रेट्स आर अलार्मिंगली इंक्रीजिंग. यू नो, WHO सेज दैट, यू नो, 10 to 15% आर देयर नॉर्मल रेट्स. इफ दे गो बियॉन्ड दैट, देन इट इज़ अ सर्जरी विच इज़ हार्मफुल टू द मदर एंड द न्यू बॉर्न. बट अनफॉर्चुनेटली आर सिजेरियन रेट्स आर टू द ट्यून ऑफ 40%, इवन मोर देन 40%, टू द ट्यून ऑफ 60%, 70% इन प्राइवेट फैसिलिटी एज कम्पेयर टू द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज. सो कम्बाइंड विद ऑल दिस, इफ यू डू नॉट मेंटेन द हाइजीन, इफ यू डू नॉट हैव प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वॉटर, देन दिस आई एम थिंग विच इज वेरी सिंपल.
1: इनफैक्ट हैंड वॉशिंग सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव तरीका है.
2: बिल्कुल,
0: वन वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन.
2: सो हैंड वॉशिंग सबसे सिंपल है, हैंड वॉशिंग सिंपलेस्ट भी है और सबसे पावरफुल टूल भी है, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ डायरियल डिजीज इन इंडिया एंड ग्लोबली.
1: इनफैक्ट द कनेक्ट, यू नो, द कनेक्शन इज वेरी डायरेक्ट. कंटामिनेटेड हैंड्स स्प्रेड पैथोजेंस इनटू फूड, दे आल्सो दे स्प्रेड इनटू वाटर, दे फ्यूल आउटब्रेक्स, एंड वी हैव सीन दैट, यू नो, वी हैव सीन इट वेरी क्लोजली. रेगुलर हैंड वॉशिंग विद सोप कैन रिड्यूस डायरियल केसेस बाय अप टू 40%, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस.
2: As India work towards the goal of freedom from illness towards a विकसित भारत, मैम आप बताइए कि और क्या additional steps लेने जाने चाहिए जो बच्चों को protect कर सके.
0: Right. आपने बात की कि भूख से मुक्ति, freedom from hunger. I think today the question is not of availability of food, it is of the right choices. And I'm not only talking about adults, I'm talking about children also. You know, I work in a rural area of Rajasthan. There's so much of malnutrition. And the reason is that women don't have time to cook because wo jangal mein jaake lakdi chunti hain. Aur bachchon ko pata kya milta hai? Parle ji aur kurkure aur chips. So it's the choice of the, kyunki micronutriency, which is anemia, I'll again and again hamper, because that's very important for the brain development. Agar aap hari sabziyan nahi khate hain, चावल आटा दाल की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन हरी सब्जी की कमी होती है किचन, हरी सब्जी बनाने की कमी होती है. इवन पीपल हु आर अफ्लुएंट घर पे खाना भूल गए हैं, दे ईट मोर ऑफन आउटसाइड, एंड मेनी अ टाइम द चॉइसेस आर अनहेल्दी. सो आई थिंक राइट फ्रॉम बिगनिंग द राइट चॉइसेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन हाइजीन, हाइजीन इंक्लूडिंग योर पर्सनल हाइजीन और योर टॉयलेट हाइजीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शुरू से बच्चों को स्कूल से ही सिखानी चाहिए कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना है. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाई द स्कूल प्रोग्राम्स ऑफ स्वच्छ बनेगा भारत. सो बिकॉज यू नो, इफ यू पुट समथिंग इन अ चाइल्ड्स माइंड, विल नेवर फॉरगेट. अनदर थिंग विच हैज हैपेंड विच इज गोइंग टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन इज द एजुकेशन ऑफ द मदर.
1: Yes.
0: Enabling them to be more digital friendly. One thing which has come up in NFHS 6 is that the number of women who are internet friendly has increased. Women who have independent, their bank account has increased. So like the social securities and the welfare schemes, they come straight to the mother.
1: Yeah. Which actually,
0: so there are no patriarchal gatekeepers.
1: I think an important point here, of course, we're talking about, you know, whether it's mothers, fathers, all of us play a critical role in bringing out good children, future citizens of our country. Lekin ab hum diarrhea ki baat kare, to chahe diarrhea ho ya COVID jaise challenges, I want to here put out ek aisa network hai jo har din ladta hai, jo hamari ASHA workers hain.
2: Wo ek healthy India ke soldiers hain. Aaj hum unse milenge, unke kits dekhenge aur samjhenge ki unhone apne gaon mein kya badlav laye.
1: So if we can please have the ASHA workers join us here today, I think, please aaiye ma'am. So Ravi, humne dekha hai, we've all seen, I think during COVID, the critical role they've played, and not just I think COVID, the World Health Organization has also felicitated them and seen the kind of work. They really are the thread to ensure that community healthcare reaches these ASHA workers. In fact, hum aapse kuch charcha karna chahenge, if you can share with all of us, aap jo kaam ground par karte hain, ghar ghar jaake, us kaam ke baare hum sabko zara bataiye.
3: Okay. First of all, thank you to my NDTV and thank you all of you for calling us here. I'm feeling very honored. Thank you so much for this opportunity. हम लोग BMC से हम लोग as a health worker हम लोग काम करते हैं आशा worker के तौर पे. I'm working since 12 years in the BMC. We are working level slums में हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. हम लोग child and women जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशंस हो गए. देन मैम ने जैसे बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनके उन्हें हम लोग बहुत सारे मतलब फर्स्ट वीक से लेके उनके एंड तक जितना उनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन रहता है तब तक हम उनको बहुत सारे सलाह देते हैं, बहुत सारे उनके जो ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती है लाइक प्रेगनेंसी से लेके बच्चा कंसीव होने से डिलीवरी तक जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग उनको. मैम ने जैसे बताया ब्रेस्ट फीडिंग तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का ये इम्पोर्टेंस हम लोग उनको समझाते हैं. और बच्चों में मैल न्यूट्रिशन ना हो इसके लिए हम लोग उनको हेल्थ टॉक वगैरह देते हैं. और बहुत सारी जैसे अभी बारिश का मौसम है तो सीजनल जब होते हैं सीजन बारिश का मौसम होता है तो बारिश में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं तब हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग काम करते हैं उसमें भी बारिश में भी. ऐसे बहुत सारी चीज़ है जैसे कि अभी पोलियो रिसेंटली पोलियो है तो आशा वर्कर्स एंड जो उसकी CHVs है कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर्स उनकी वजह से आज हम वी कैन से प्राउडली कि हमारी वजह से आज भारत पोलियो मुक्त होने जा रहा है या फिर हो रहा है.
1: I think we need to, yeah.
3: So I'm very
1: आप कह सकते हैं, I mean you can definitely say that. हमने देखा कि जितना काम जो हमारे पूरे देश में ये आर्मी ऑफ आशा वर्कर्स, हम इन्हें कह सकते हैं सोल्जर्स ऑफ आशा वर्कर्स है. इनफैक्ट द सैनिटेशन वर्कर्स हैव ऑल्सो प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल. और इंडिपेंडेंस डे में वी डोंट हैव अ सैनिटेशन वर्कर अनफॉर्चुनेटली जॉइनिंग अस बट दे हैव बीन पार्ट ऑफ आवर कैंपेन. दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल. इनफैक्ट पर चैलेंजेस क्या आते हैं आपके?
3: चैलेंजेस में बहुत सारे होते हैं लाइक समटाइम्स पीपल जो होते हैं हमें रिस्पांस अच्छे से करते हैं. कुछ कुछ लोग होते हैं जो सीधा विदाउट आस्किंग एनीथिंग उनको लगता है कि हम लोग कुछ सेल करने के लिए आए तो सीधा दरवाज़ा मुंह पे बंद कर देते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं हम फेस करते हैं बट वी डोंट बॉदर अबाउट इट. हमें हम घर से यही सोच कर निकलते कि नहीं हम आज हमें कुछ करना है, हम सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं एंड हमें करना है दैट्स इट. हम बाकी की जो चीज़ें हमें रुकावट देती है उनको हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे काम में जैसे बहुत सारा वर्क प्रेशर भी होता है कि एक काम करते तब दूसरा कॉल आ जाता है कि आपको ये भी करना है साथ में. अभी बारिश का मौसम है तो बहुत वाटर लॉगिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें लोग जाते हैं तो उनके प्रिवेंशन के लिए उनको लेप्टोस्पायरोसिस या ऐसी कुछ बीमारी ना हो तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम लोग उनको डॉक्सी की मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते तो हमें फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं चैलेंजेस भी बहुत आते हैं बट हम ज्यादा उनको भी
1: बॉदर नहीं करते. आप बैठते चले जाते हैं. आई मीन फ्रॉम NDTV डिटॉल हम सबकी तरफ से आज यहाँ जो बैठे हैं वी गॉट पद्मभूषण पद्मश्री वी गॉट नेहा आयुष्मान एंड रवि जो ग्राउंड पर काम करते हैं. थैंक यू. हम यू नो दिल से आपको धन्यवाद करना चाहेंगे.
2: बट बिफोर वी एंड दिस सेगमेंट
1: करना चाहेंगे
2: आज हम इंडिपेंडेंस डे पर हमारे हीरोज को एक स्पेशल पिन देंगे. बनेगा स्वस्थ इंडिया ऑनर्स ऑल द आशा वर्कर्स विल बी गेटिंग That pin, the Swasth Azadi pin, ये उनकी contribution का salute है. Let's wait for the
1: आज हमारे साथ यहाँ पे चार आशा वर्कर्स है बट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे दिस इज the all the आशा वर्कर्स in fact are working tirelessly in our country. Can we please have the pins and can I please request you all to please pin them? I can think we can start with you, Dr. Clive. You can pin our first worker and Sai Damodan ji, आप भी आइए. And I will, I think, start with please. Thank you so much to Asha. Ma'am, please aaiye. And of course, even our sanitation heroes, for them as well, and the Asha workers.

0: विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आरती और मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे?

0: वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीजन 12 फिनाले एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन का, ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू स्विच गियर्स, थोड़ा फन, थोड़ी मस्ती एंड थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि आज हमारे साथ है आयुष्मान, जो क्रिएटिव भी है, थॉटफुल भी है, रोडीज के विनर भी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ है नेहा धूपिया, रोडीज से लेकर रियल लाइफ तक मुझे पता है दोनों बहुत कंपेटिटिव है. सो आई ऑल रेडी फॉर दिस. तो हमने सोचा व्हाई नॉट टेस्ट कौन ज्यादा जानकार है हेल्थ और सैनिटेशन पर. दिस इज अ बजर राउंड वेयर वी हैव अ क्विक फायर, यू नो, रैपिड फायर क्वेश्चंस ऑन हेल्थ, हाइजीन एज वेल एज एनवायरमेंट. सो आयुष्मान एंड नेहा, यू गाइस रेडी? दोनों के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास तीन छोटे छोटे बच्चे हैं. आई मे बी थिंकिंग छोटे, देखते कितने नॉलेजेबल हैं. दे आर यंग चैंप्स ऑन ईच साइड. सिंपल रूल्स, सवाल होगा हेल्थ और हाइजीन से जुड़े, और आपको बजर दबाना है द मिनट यू ऑल नो द आंसर. रेडी? रेडी फॉर इट?
1: रेडी गाइस, यस.
0: अच्छा, आप रेडी हो? थम्स अप. ओके, पहला सवाल, कौन सी हैबिट इलनेस से बचने में आपको हेल्प करती है? सोप और, अरे सुन तो लो पहले, दोनों दोनों को बैठे. नहीं
2: नहीं, इलनेस से बचने के लिए हम
0: आंसर सुनो तो सही. सोप और पानी से हाथ धोना, मील स्किप करना, टूथब्रश, क्या था?
1: ये बज नहीं रहा है.
2: सोप और पानी से हाथ धोना.
0: ओके, दैट गोस टू हर.
1: बट ये बजे तो सही ना.
0: ओके ओके, ये कैसे बजा? फिर से टेस्ट करिए. मैं
2: नहीं, वो
0: आयुष्मान चीटिंग चीटिंग. 1 point गॉन.
2: बजर कैसे दबाते हैं? लेफ्ट हैंड से.
0: ओके, पहला पॉइंट
2: या बहाने मार के?

0: नहीं शायद ना, आप दबाना ठीक है बच्चे। ओके स्नेहा इज टू, आयुष्मान इज येट टू, खाता शुरू होना बाकी है। तीसरा सवाल है, हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए?
1: 20
0: इलेक्ट्रिसिटी बचाती है? ऑप्शन सुन लीजिए, क्या आंसर है बताइए। अनयूज्ड स्विच ऑफ करना, सब कुछ को ऑन रखना, फ्रिज बार बार
2: खोलना, स्विच ऑफ करना,
3: पर बजर नहीं दब रहा हमारा।
0: Okay, this is a tie. Fair enough.
1: क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं और अप्लायंसेस नहीं दबा रहे हैं, तो ये पॉइंट भी उनको दे दीजिए।
3: चलो चलो।
0: To all.
3: Thank you.
0: पांचवा सवाल, एनवायरनमेंट के लिए कौन सा बैग बेटर है? रीयूजेबल क्लॉथ बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक, कि हर बार नया पेपर बैग?
3: रीयूज़। आंसर देने दो यार। नेहा,
0: नेहा इनको बोलने दीजिए।
1: रीयूज,
3: रीयूजेबल।
0: माइक उठा के बोलो,
3: माइक उठा के।
0: रीयूज, रीयूजेबल बैग। ओके सो 3, 2, 6 क्वेश्चन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बच्चों, ये आपको जीतना पड़ेगा ये वाला सवाल।
3: पहले ही दबा के बैठी है औरत।
0: ये मैंने पहले ही बोला था कि बहुत
1: कुछ काफी ऑप्शन से मेरे को आंसर पता चल जाएगा ना।
0: शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चे? बाइसिकल, कार, मोटरसाइकिल?
1: बोलते दिया, हो गया रिकॉर्ड, हो भी क्या, हमारा आंसर रिकॉर्ड हो गया। आप अगले सीजन में आइएगा बजर दबाने।
3: हमारा बजर खराब है, ये चेंज करो यार।
0: आयुष्मान, देयर समथिंग रॉन्ग विद योर, आई स्वेयर।
1: इन्होंने हाथ नहीं धोए ना, वो बजर
0: हाथ नहीं धोए,
1: हाथ जरूरी है, मैं हाथ
0: धोके तो मैं दो बार चेक कर रही हूँ, चल रहा है। ओके
3: थैंक गॉड, ये तो चल रहा है।
0: नहीं, वो भी चल
1: राइट वाला हाथ धोया है ना।
0: नेक्स्ट सवाल गाइस, कम ऑन, नेक्स्ट सवाल। नेहा 4, आयुष्मान 2। बच्चों आपको नेक्स्ट वन लेना पड़ेगा। प्लास्टिक बॉटल्स का क्या करना चाहिए?
3: रिसाइकल करना चाहिए प्लास्टिक बॉटल्स।
1: ये पसंद नहीं था ब्राव,
3: दिस इज कर्मा
0: गाइस,
3: और उड़ाओ मजाक।
0: दैट्स द फन ऑफ दिस, दैट्स द फन ऑफ दिस। 3 and 4, ब्रशिंग के वक्त पानी कैसे बचाना चाहिए? ऑप्शंस पीछे है, देखिए पानी कैसे बचाना चाहिए। टैप बंद करना चाहिए, टैप चलता छोड़ देना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी
1: बंद करना चाहिए।
3: यार
0: बच्चों,
3: इतना फोमो
4: वेरी
0: गुड बच्चे। आपका नाम? इशिता। गॉट इट राइट।
1: स्कूल से? क्या बात है।
0: ओके, वेस्ट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आप पीछे ऑप्शंस भी देख सकते हैं।
1: दे दिया, दे दे दे दिया।
0: बताइए।
1: क्या मैंने बजर दबा दिया?
0: रीयूज और
3: एक बात बताऊं, ये इस साइड में प्रॉब्लम है, यहां बजर दबी।
1: रीयूज, रीसाइकल।
0: ये सब
1: आप बताइए, आप बताइए। आप जो मैंने बोला वो बोल दे।
3: इनको भी चांस दो बोलने का, हमारे बच्चों को।
1: हां बोलिए जोर से।
4: रीयूज, रीसाइकल।
1: क्या बात है,
0: रीसाइकल करना चाहिए। ओके नेक्स्ट वन आपको आंसर करना है। ये जो आपका नाम बताओ। He's all excited, Ayushman. You need to make sure you press the buzzer before I finish the question.
3: Yeah.
0: Planet के लिए कौन सा better है?
1: Press it. आपने दबा दिया, आपने दबा दिया। बता दो बाबा। आपने नहीं बोला ना, आप बोल दो। अपनी water bottle carry करना बोल दो।
4: अपनी water bottle carry करना।
1: 11 points.
3: Can I change my hand, guys?
1: I want to see Ayushman को buzzer दबाने के लिए क्या करना चाहिए?
3: I don't know, yeah.
0: I think आपको एक बार हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम सबकी, सिर्फ गवर्नमेंट की या एनवायरमेंट ग्रुप्स की?
3: सबकी, दो बताओ।
0: सी बच्चों से भी दब गया मेरी। दैट्स आई थिंक अ ग्रेट आंसर, हम सबकी। He stands for, I think, the youth of our country.
1: Yes.
0: Bola meri, hum sab ke liye. Well, that was a fun game. Or, of course, Neha jeeti hai. Sirf ek game nahi tha, Neha. Nahi
3: to jeete.
0: Nahi, Ayushman aur Neha, ye sirf ek game nahi hai. Ye hume yaad dilata hai ki health aur hygiene ki basic baatein hume safe rakhti hai. And I think our kids also know that. Aur diseases se hume azaad rakhti hai. Thank you so much, bachche. Aap aaye humare saath khelne. Aap, in fact, winners hai. Par aap bhi winners hai. Because I think... You know what he said, ki meri responsibility at that age to realize it's his responsibility towards a cleaner and healthier India. Thank you so much, bachche, aap hamare saath jude.
3: Thank you, boys. Thank
1: you. Thank you, guys. You are amazing. Aapne bahut acha example set kiya hai.

0: जो सब बच्चे हमें देख रहे हैं, जो सब माँ बाप देख रहे हैं, रियली वेल डन.
1: Yeah, and I think, you know, on a platform like this, it's not just about fasters, finger first. जैसे आयुष्मान का तो खैर बाजार उनसे नहीं दब रहा था, हम सबसे दब रहा था. लेकिन it's also about how informed our future generation is.
0: Yes.
1: The kids of our countries, इनको पता है क्या उनके लिए सही और क्या नहीं है. Well, thank you all so much. We'll take a really short break. But when we come back, we're going to be having this conversation even more in detail and lots of fun with our kids today. Thank you so much.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: है. यू हैड मेंशन दैट बिफोर, आई थिंक आप दोबारा कहना चाहेंगे उसके बारे में.
1: यस, क्योंकि जब हम पहले बात करते थे कभी भी, मेरे हस्बैंड और मैं, और मैं कहती थी यार यू नो आई ऑलवेज वांट टू बी अ मॉम, एंड करण यूज्ड टू बी लाइक ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है, आई एम श्योर यू ऑल हर्ड दैट राइट, लाइक व्हाट वर्ल्ड आर वी ब्रिंगिंग आवर चिल्ड्रन इन. एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन डिड नॉट हिट मी बिफोर आई बिकेम अ मॉम. आई वॉज लिविंग दिस आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, सिंह हाँ सब ठीक है, सबके बच्चे हो रहे हैं, हम भी कर लेते हैं. But now when my son was born, I have started feeling very differently about the environment. You know, everything, whether it is the air quality, whether it is simple things around our house. We moved homes after my son was born because I wanted him to be brought up against in the midst of trees. जो बॉम्बे में आपको नहीं मिलता. हमने स्पेशली ऐसा घर ढूंढा जहाँ आसपास पेड़ हो, जहाँ उसके पास बैकयार्ड हो, जहाँ वो पौधे लगा सके, पौधों के बारे में सीख सके. एंड आई थिंक ये डिफरेंसेस आ जाते हैं व्हेन यू बिकम अ पेरेंट. यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नेचर बिकॉज हैविंग अ चाइल्ड इज सच एन एनवायरमेंटल थिंग इन इटसेल्फ एज वेल. सो यस, दैट हैज डेफिनेटली बीन अ चेंज.
2: एंड देन यू आर मोर कॉन्शियस एंड माइंडफुल अबाउट ऑल द डिसीजंस यू टेक एज पेरेंट्स. यू नो आई थिंक we're all parents, but specifically for y'all as artists and as individuals, of course this planet is something I think Ravi you'll also agree we need to share with our next generation. Aapne pehle bhi baat ki thi as a parent, you know what we feel. I want to ask you both, Priya and Ayushman, I would request you if you would like to share a few lines on protecting our earth for the future. Agar aap kuch share karna chahenge apne zehen se environment ke liye.
1: आई थिंक यही सवाल हमेशा जहन में आता है कि हम कौन सी आज़ादी छोड़ कर जा रहे हैं. यू नो, साफ पानी पीने की आज़ादी, साफ हवा की आज़ादी, वो आज़ादी जो वो सचमुच में महसूस कर सकें. तो हमेशा मेरे जहन में यही सवाल आता है कि मैं क्या विरासत में दे रही हूँ अपने बच्चों को. And that is a question that has always stayed with me as a parent.
2: So that leaves a thought, I think.
0: एक मैं इस पे लिखा था मैंने कुछ, सेहत, मेहनत, हुनर और अदा. सेहत, मेहनत, हुनर और अदा, और आखिर में उसकी रजा. सबसे पहले लेकिन सेहत आती है, आपके हुनर से पहले, आपकी मेहनत से पहले, और आपकी स्टाइल या अदा से पहले. और आई थिंक सेहत से ऊपर कुछ नहीं है. जब तक आप एक हेल्दियर एनवायरनमेंट नहीं देंगे फ्यूचर जनरेशंस को, तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट इवन बिकमिंग पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दैट, कि हम किस शहर में रह रहे हैं, कैसी जगह में रह रहे हैं, AQI इतना बढ़ गया है. सो दे आर चूजिंग नॉट टू बिकम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दिस. हम इस हालात में पहुँच चुके हैं. So I think it's very imperative that we have to think about the future generations. It starts now.
2: और आपने जो बात कही सेहत की, right Ravi, that's what our campaign has been talking, क्योंकि हमने realize किया स्वच्छता जरूर है, जरूरत है, लेकिन किस तरह सेहत से connected है. तभी ये campaign हमें जो आज 12वें साल में है, तभी बनेगा स्वस्थ इंडिया, right?
3: Ambika, I want to add something very interesting. As this is a big journey of 12 years, you know, like Jiva is one of our very important partners, which is Global Interfaith Wash Alliance. And you have been interviewing Swamiji from last many years in Rishikesh. Muniji, he is fondly called at Paramarth Ashram. It was, first conversation with him where he said, like, can we have the crematoriums which are wood-free? Can we plant wood-free crematoriums?
0: Okay, yeah.
3: Yeah, and I asked him like, okay, तो फिर ashes का क्या करेंगे? कि he told like इसमें तो nitrogen भी है, इसमें तो phosphate भी है. So जो हमारे जो parents या जो भी हमारा love वो नहीं रहते, then you know आप पेड़ लगाइए और उसी यही जो last जो remains जो आपका बचता है ना, जो ashes है, उसी को उसके अंदर आप डालिए ताकि वो, और उसको अपना नाम दे दीजिए कि किसकी मेमोरी में आप लगा रहे हैं. आई थॉट लाइक ये सच में होता है क्या स्वामी जी? ही सेड आई कैन शो इट टू यू. आई सेड ठीक है, देखने चलते हैं. एंड ही टुक मी टू द प्लेसेस एंड वी सॉ इट फर्स्ट हैंड आवरसेल्फ. वी थॉट लाइक यू नो इफ दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, लाइक यू नो अपने जिसको आप प्यार करते हैं उसके नाम पे आप पेड़ लगाते हैं, दैट रिमेन्स फॉर एवर. यही कॉन्सेप्ट जब हम बच्चों के पास लेके गए इन अ वेरी डिफरेंट वे, द फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चन वाज लाइक यू नो क्या पेड़ों में जान होती है? यू नो देयर इज अ पर्टिकुलर वे हाउ साइंस इज टॉट टू अस, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू नो एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू एक्चुअली मेक किड्स सी हाउ एक्चुअली ट्रीज ब्रीद, हाउ दे आर कनेक्टेड. There is a very young lad. She is studying in Stanford University. She is in her third year now, and she created something called Kiara Kits for us.

0: और जब हम इसको साथ जोड़ेंगे, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इज गोना कम आउट ऑफ दैट फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर अ हेल्दियर इंडिया. एंड आई वुड आल्सो, ऑफ कोर्स आई हैव रवि एंड आयुष्मान विद आवर किड्स, आई वुड आल्सो लाइक टू कॉल डॉक्टर विवेक ऑन स्टेज टू हेल्प अस सॉल्व दिस पजल. चलिए आइए,
1: लेट्स गो.
0: कॉल करते, कुड वी प्लीज हैव डॉक्टर विवेक, एंड थैंक यू. रवि, डॉक्टर विवेक एंड आयुष्मान, दिस इज द पजल विच वी इज द पजल फॉर अस. वहाँ पीसेस पड़े आपके पीछे रवि.

0: are your thoughts on something like this where the kids...
1: This is the best part. I think last year we yehi kiya tha, bachchon ko saath mein ekatrit karke kuch aisa kiya tha jisse wo seekh sake.
0: Ji.
1: Aur apne hands ko humne wahan pe kiya tha. And what was the name of the activity?
0: Color jo humne
2: yes. We played with the bricks.
1: Yes.
2: We did the hopscotch together.
1: Absolutely.
2: Yeah.
1: To ye end isse kar rahe hain jahan par bachche kuch seekh bhi sake. और खेल भी सके एंड ऑल दीज मैसेजेस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट और आज़ादी का मतलब यही होता है कि सिर्फ हम अपने देश से प्यार करना तो हर कोई करता है देश के लिए कर क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और बच्चे अगर सीख जाए तो आगे जाकर देश के लिए बहुत कुछ हो सकता है
0: एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें दिस मे बी अ स्मॉल थिंग बट लाइक यू राइटली सेड बच्चे ही हमारा फ्यूचर है
1: एब्सोल्युटली आज के दिन पर हम अक्सर आज़ादी को याद करते हैं बिकॉज इट्स 15th August बट रियल फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती असली आज़ादी तब होती है जब हम अपने देश को डिजीज फ्री और सैनिटेशन स्ट्रॉन्ग बना पाए
0: और जब हम एक ऐसा भारत बनाते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे जो रिजिलियंट हो तभी हम आज़ादी को ट्रूली लिव करते हैं एवरी सिंगल डे
1: बनेगा स्वस्थ इंडिया बनेगा स्वच्छ भारत और तभी बनेगा एक सच में स्वतंत्र भारत

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: खुद ही जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: Welcome back. Wishing everyone a very happy Independence Day. We're starting off with some breaking news right now. BJP MP Sudhanshu Trivedi has now launched a sharp attack on the Congress over an alleged incident during the singing of Vande Mataram at the party office. BJP claimed that Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge were seen conversing while the national song was being sung, calling the conduct disrespectful and an insult to the sentiments of Indians. He also accused the Congress of historically reducing the song and demanded an apology from the party.
1: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
2: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार से बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
3: भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहिए। सोनिया गांधी से भारतीय जनता पार्टी को सबक सीखना चाहिए। सोनिया गांधी पे सवाल उठाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सेक्युलरिज्म अगर सीखना है तो सोनिया गांधी से सीखें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।

0: कांग्रेस।
1: हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है ना वो बहुत संकीर्ण है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर वो लोकतांत्रिक होते तो इस जितने भी सुझाव आते हैं विपक्ष की ओर से आते हो या किसी भी समाज के वर्ग से आता हो तो उस पर वो सहानुभूतिपूर्वक से विचार करते, उस पर बहस करते, चर्चा करते, मंथन करते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है, जो एक डिक्टोरियल एटीट्यूड होता है वो उनका है, कि हमने जो कह दिया वही फाइनल है और उसको अगर कोई रोकने की कोशिश करता है या उस पर कोई क्रिटिसिज्म करता है, उसकी निंदा करता है, तो वो या तो नक्सलाइट है या देशद्रोह है।
2: देखिए, मुझे अफसोस है, प्रधानमंत्री को पहले ये बताना चाहिए कि दिमागी तौर पे जो नक्सली हैं वो कौन लोग हैं। आप लाल किले की दीवार से बोल रहे हैं, 15 अगस्त को बोल रहे हैं, तो आपको यह भी बताना चाहिए। और आप 12-13 साल से हुकूमत में हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं खत्म किया उन लोगों को? क्या बीजेपी और आरएसएस के अंदर वो लोग मौजूद हैं? कहां मौजूद?
3: Well, from the Red Fort, Prime Minister Modi laid out a 7-point roadmap for India's next phase of growth. Shakti ki Saptadhara, spanning manufacturing, agriculture, technology, infrastructure, defense, the green and the blue economy, and India's soft power. The vision brings together the key pillars, the Prime Minister says, can drive a more self-resilient, innovative, and globally competitive India. Here's more.
4: 7 streams, one national mission. From the Red Fort, Prime Minister Modi unveiled his vision of Shakti ki Saptadhara, the forces he says can power India's next leap.
5: Saptadhara ki in 7 shaktiyan, sapta shaktiyan, uddesh sirf ek sector mein pragati karne ka nahi hai. Ek holistic approach ke saath hame rashtra ko jo lakshy lekar ke hum chal rahe hain, jo ambition lekar ke chal rahe hain, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना।
4: फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल प्रोडक्शन हब विद अ फोकस ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड स्केल। सेकंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द फार्म, टेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम द फील्ड्स टू ग्लोबल मार्केट्स। थर्ड, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फ्रॉम यूपीआई एंड एआई टू रोबोटिक्स एंड 6G. With India aiming to become a global tech hub. Then comes Gati Shakti, faster, seamless connectivity across roads, expressways, high-speed rail and ports. Defense power, with a push for self-reliance, drones and next-generation defense technologies. The sixth stream is the green and blue economy, from green hydrogen and renewable energy to fisheries, coastal tourism and ocean technology. And finally, India's soft power, yoga, Ayurveda, films, gaming, and digital content. The message is clear. These streams must move together, each reinforcing the other.
5: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। Manufacturing power, कृषि और food production, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
4: From factories and farms to technology, defense and soft power, the Prime Minister's 7 streams converge on one larger goal, an India that is self-reliant in strength, confident in spirit and ready to lead the world. Bureau Report, NDTV.
3: Meanwhile, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row that is over the implementation of the Women's Reservation Act and also its linkages with delimitation. Says women's reservation should not be tied to the exercise of redrawing Lok Sabha

0: constituencies. The law was passed by Parliament in 2023, but its implementation remains tied to the delimitation process. And now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
2: A call for greater representation, a call for political consensus, and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
1: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है.
2: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
3: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर?
4: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
2: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
5: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी. हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
2: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
6: हाँ, 454 ना 2-2.
2: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
0: Well, a fresh controversy has erupted over Vande Mataram at Congress headquarters Independence Day celebrations. BJP has claimed that Sonia Gandhi was angry over Congress workers to play full version of Vande Mataram. BJP released a video and said that Sonia Gandhi first gestured to Kharge and then tried to communicate to the singers to stop. Kharge was also seen amused at the continuance of the singing, and soon a functionary gave some explanation to both. Meanwhile, Congress has maintained that the full version of Vande Mataram was played in the event, but they also said that the first two stanzas were subsequently adopted as the national song and that they will continue to play those stanzas only.
7: Hum Congress ki sarvoch netrutva, kyunki isme teeno shamil hain, sarvoch netrutva ke is acharan ki ninda karte hain aur यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया. और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा

0: झंडो उत्तोलन करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जा रहा था। डॉक्टर बोला तबीयत खराब है। हमने कहा कि मैं अपने मर्जी से लिख के जा रहा हूँ, मर भी जाऊंगा तो हॉस्पिटल का जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं।
1: हमारे झारखंड राज्य में इस तरह से उसके बावजूद
0: हमको आज झंडा जलील करते हुए
1: फहराने से रोका जा रहा है।
0: अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे अरेस्ट किया जाए ना भाई, हमको जेल भेजा जाए। और अगर अपराधी नहीं हूँ तो हमको क्यों, किस आधार पे, किस राइट के तहत हमको रोका जा रहा है? ये हमको कानून बताए ये लोग, संविधान के कौन से धारा के तहत हमको रोका गया? आज मैं सबको FIR करूंगा, जो भी हमको आज रोक रहे हैं सारे सारे लोग को मैं FIR करूंगा। किस आधार पर हमको रोका गया, क्या राइट है इन लोग को हमको रोकने का? अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे अरेस्ट किया जाए, सबको लीजिए, मैं सबको बाय नेम FIR करूंगा। ऐसे गुलामी नहीं चलता है बॉस, कब तक झुक के जिएंगे, कब तक गुलामी करते रहेंगे?
2: Well, on that note, we slip into a very short break. Come right back, Los Falanda.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
1: अरे मेरे राजा.

0: clarity at all as to what's going to happen.
1: Mobile पे भी दिखा रहा है कि आपका flight time पे है, आप चले जाइए. मैं अभी 150 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ पर आया हूँ और यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ कि साहब फ्लाइट आपका कैंसिल. मैंने DG यात्रा देखा, बोले कैंसिल.
2: A DGCA inquiry committee concluded that the primary cause of the disruptions were over-optimization of operations, inadequate regulatory preparedness, along with deficiencies in system software support and shortcomings in management structure and operational control.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
1: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है।
0: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
2: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है। अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर?
3: The intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
0: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
4: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है।
0: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades ago.
5: हाँ, 454, ना 2-2.
0: The story goes back to September 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
6: In other news, politics has erupted over Prime Minister Modi's push for women reservation bill. Opposition has slammed Prime Minister Modi after he urged all parties to come together and pass women's reservation bill. Congress has slammed Prime Minister Modi and said that if Prime Minister is concerned about women's reservation, it should have been implemented by now. They also stated that Congress has already given mandate for women reservation bill in 2023 and BJP should rather have been implemented it till now.
3: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation. We have been saying both when the women reservation bill came also that de-link women reservation and delimitation and census. See, do it in the existing number of seats in Lok Sabha and the state legislature. They do not do that. They want to bring in their agenda of delimitation and they want to make it look like women reservation, which is not agreeable to everybody because we know what their ultimate agenda is. So we are saying if Prime Minister Mr. Narendra Modi ji and also the BJP is serious about women reservation, implement it today on the existing seats. We are there, we will fully support. But they are not doing it. It is because they do not respect women and they don't want to give women reservation.
7: उम्मीद करते हैं ये 15 अगस्त आज़ादी के 80वां हम वर्ष मना रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से इस तरह के भाषण और ये राजनीति होनी चाहिए थी। मानसून का पूरा सत्र खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी आप नदारत रहे, आप आए नहीं, ये बातें तो वहाँ होनी थी जिससे आप भागते रहे। और लाल किले की प्राचीर पर अगर भाषण सच्चा देना था तो सच्चा भाषण ये है कि बताना था कि विपक्ष मांग कर रहा है कि नारी शक्ति वंदन

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका राजा आर्थर मसाला।
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

ले जाएंगे। उसके बाद 9:20-21 में अचानक, पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है हम लोग लेके चलेंगे, अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव, मैंने मूड पे टूट पड़ते हैं, पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे, तो बोले कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा, और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
7: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
8: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
6: का राजा और मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: Vande Mataram. For the first time ever, its full rendition was sung from the Red Fort on Independence Day after Parliament, in this monsoon session, voted to give the complete national song the same constitutional stature as our national anthem. History made in real time. But here's where the story turned. The full rendition wasn't just sung at the Red Fort. It was sung across the country, including at the Congress headquarters, Indira Bhavan, where the leader of opposition, Rahul Gandhi, and Congress President Mallikarjun Kharge chose to be instead of at the Red Fort. And that's when the cameras caught something nobody had expected. The third stanza begins. Sonia Gandhi turns, visibly disconcerted, and looks at Mallikarjun Kharge. What follows then is 15 seconds of chaos, an animated exchange, party workers closing in, fingers pointing, people moving in and out of the frame, all of it while Vande Mataram is still playing in the background. The BJP wasted no time in calling this outright disrespect. Their charge? The former Congress president was angered that the full rendition was sung at all, calling it, in their words, disrespect for the national song. The BJP reached for the Prime Minister's own phrase from his Red Fort address today, Dimagi Naksal, intellectual Naksals, and pointed fingers straight at the Congress. The grand old party, meanwhile, has multiple versions to offer for what exactly transpired. One senior Congress leader says, this was never about the song. It was about a chair. Mr. Kharge, they said, had been standing for too long and Sonia Gandhi was simply asking for one to be brought out for him, mid-national song. Congress leader Shakil Ahmed, though, had a different version to this story. He said that singing the full rendition breaks with the Congress's own tradition of singing only the first two stanzas and that sentiments were hurt. He says he's actually glad that senior leader stepped in and objected. Then there was Congress MP Manoj Kumar, who backed him up and said Sonia Gandhi advised the party to stick to the two stanzas as Congress history dictates. And Pawan Khera went further back all the way to 1937, Calcutta, when Congress first resolved to only sing the opening two paragraphs of Vande Mataram.
1: की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए है लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है तो इस पे विचार होगा पार्टी के अंदर भी विचार होगा
2: अरे माननीय सीपीपी लीडर माननीय सोनिया गांधी जी ने बीच में कहा कि हमारा जो पंक्ति है दो पंक्ति है उसके बावजूद भी चूँकि सदन में पास हुआ इस बार इसी सत्र में तो हमने उसको भी पूरा किया सदन के बातों को भी चूंकि हम लोग कानून मानने वाले हैं
3: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए
4: लेकिन आज तो पूरा बचा
3: कह रहा हूँ चलाना चाहिए
5: इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया
6: राहुल गांधी डिड नॉट अटेंड द 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस एट द रेड फोर्ट दिस आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स वन थिंग दैट द कांग्रेस पार्टी इज सफरिंग फ्रॉम दिमागी नक्सल माइंडसेट व्हिच द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट दिस इज व्हाई इट इज नो लॉन्गर अ कोइंसिडेंस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुडे इज नॉट इंडियन नेशनल कांग्रेस बट दिमागी नक्सल कांग्रेस
0: सो व्हिच इज इट A chair or a controversy? 79 years after independence, on a day built for national unity, the BJP and the Congress are back to locking horns, this time over the national song itself. And that Prime Minister Modi's phrase is still hanging in the air. Who exactly are the Dimagi Naksals that he spoke about today? Let's first listen in to what he said and then we debate.
7: Barson tak desh ki satta mein माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था मेरे प्यारे देशवासियों जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा प्योर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.
8: Across the country,
9: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. 3 decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change, our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
11: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है, जब तक खुशबू सबसे

0: से बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, मोर रेस्टलेस। It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. Three decades of watching the world change. Asking the questions that couldn't wait. Of telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्थर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर झेलम की कलकलाहट मुझे सुनाई दे रही है। मेरे ठीक सामने पीओके के पहाड़ हैं और जिस ज़मीन पर मैं खड़ी हूँ, ये गेटवे ऑफ कश्मीर भारत के नक्शे पर उरी, जो साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तान के साथ जो चार युद्ध हुए हैं, उन चार युद्धों में इस ज़मीन का अपना एक अलग महत्व है और इसीलिए हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर जवानों की अग्नि परीक्षा भी होती है, विजय का जश्न भी होता है, तो आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए इससे बेहतर जगह और इससे बेहतर साथ क्या हो सकता है। तो आज जवानों के बीच हमारे साथ पटौदी के नवाब हैं, दिलों के सरताज हैं और सिनेमा की दुनिया के सुपरस्टार हैं, सैफ अली खान। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका।
1: नमस्कार मीनाक्षी जी।
0: नमस्ते, थैंक यू, वेलकम।
1: नो नवाब प्लीज़।

0: जय जवान। आइए बढ़ते आगे। हिंदुस्तान
1: अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आपको लेकर आए हैं
2: जी।
1: और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सामने हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो इस जगह की सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर चैलेंजेस क्या है वो बताता है। हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट है
2: जी। जरूर, अभी आप एक व्यू पॉइंट पे खड़े हैं और जिस लोकेशन पे आप अभी खड़े हैं हम तीनों साइड में POK से घिरे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो आपको हर चट्टान पर एनिमी की पोस्ट दिखेगी, बेस पर पोस्ट दिखेगी।
1: They can also see us.
2: Correct.
1: Right now?
2: Presently, yes. In real time.
1: अच्छा, क्योंकि उरी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है पाकिस्तान का। तो जो भी हमारे वॉर्स हुए उस हर वक्त में ये बहुत सेंसिटिव रहा। और अभी जो ऑप्शन के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली जोड़ें तो ये पूरा एक झेलम वैली जो अगर हमें नीचे दिख रहा है, ये झेलम वैली का अगर आप इंस्टेंस लें तो पुराने टाइम से ही जब हम बोलते थे झेलम वैली कार्ट रोड या फिर सिल्क रूट, यही वो रूट है जो श्रीनगर को कनेक्ट करता था मुजफ्फराबाद, फिर इस्लामाबाद और फर्दर टू सेंट्रल एशिया। सो सारा ट्रेड इसी रूट से होता था। इसकी खास बात यह है कि ये विंटर्स के टाइम भी कट ऑफ कभी नहीं हुआ था, तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस ये रूट हमेशा ओपन रहा था। ये लास्ट में एक लाइन ऑफ डिफेंस बन गया था जिसको अभी हम LC के नाम से या LOC के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पिछले साल यहाँ पे काफ़ी शेलिंग हुआ था। बट अगर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूँ डिफरेंस बिटवीन हमारी आर्मी और उनकी आर्मी, तो हमारी आर्मी ने कभी भी किसी सिविलियन एरिया पर एक भी बम नहीं गिराया। हालांकि हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे, बट उन्होंने यह नहीं किया। हमारे काफ़ी गाँव में बहुत भारी मात्रा पर नुकसान हुआ था।
3: तो POK इस बार्ड वायर की उस तरफ से शुरू होता है
2: जी। तो नाला एक सिधाई बना रहा है,
3: नीचे इस तरफ भी POK,
2: नाले की इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ POK स्टार। आपको जो गांव सामने सारे दिख रहे हैं और जो रिज लाइंस दिख रही हैं वो सब POK हैं।
3: You explain so nicely and you're so clever, yaar. Brilliant.
2: Right. So nice.

0: आपने बंकर देख लिया, बंकर के अंदर जिंदगी क्या है और कैसे दुश्मन पर नजर रखनी है, लेकिन ये देखिए आपने लाइव पेट्रोलिंग की, जो रूटीन प्रोसेस और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे ख्याल
1: से। ये नदी से है,
2: ये पूरा फेंस है, तो बेसिकली दो पोस्ट के बीच में अगर हमें फेंस को डोमिनेट करना है तो हम उसको पेट्रोलिंग से करते हैं। और एक सवाल आपने मेरे से ऊपर भी पूछा था कि ख़राब मौसम के टाइम पे हम कैसे फेंस की निगरानी करेंगे या देखेंगे या सर्विलेंस डिवाइस से, तो पेट्रोल आपके सामने लाइव जो चल रही है ये फेंस की निगरानी करती है, कोई भी दुश्मन दिखने पर ये फायर करेगी या फिर चेक करेगी कि फेंस इंटैक्ट है या कोई घुसपैठ हुई तो नहीं। हम लोग अपने घर में तो रेस्ट ले सकते हैं बट पेट्रोल्स कभी भी ख़राब मौसम के टाइम कभी रुकती नहीं है। तो आपने भी LOC शूट की थी उस टाइम पर, क्या आपने भी ऐसे ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश की थी?
1: थोड़ी पेट्रोलिंग की और हमें थोड़ा एक्शन करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का स्ट्रेस था ना, बिकॉज इट्स क्वाइट हाई अप।
0: कैप्टन अनुज नैयर का किरदार आपने,
1: दैट्स राइट मैम, वेल रिमेम्बर्ड।
2: तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी आर्मी में जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नाम, नमक और निशान। आपने इसको बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा। अगर इसका आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो नाम हमारे पलटन का नाम, नमक हमारे देश का नमक, और निशान हमारा झंडा जो आपने ऊपर देखा या तिरंगा। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें मोटिवेट करती हैं इन सोल्जर्स को अभी भी चलने के लिए इस हार्ड टेरेन में, और इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं।
1: शाबाश, जय हिंद।
0: जय जवान,
1: जय हिंद, जय जवान।
0: फॉरवर्ड पोस्ट में अभी तक जितना समय हमें मिला, मेरी नजर कुक हाउस पर आकर टिक गई है। पेट पूजा का वक्त है। आर यू हंग्री?
1: ओह, आई कुड ईट।
3: अब तैयार है आपके लिए एक, हमने बहुत अच्छा,
0: क्या बात
1: है, आफ्टर यू।
0: वाह, क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक छोटे से सेटअप में सारे जरूरत के सामान मौजूद है यहाँ पर।
1: एक्चुअली कुक खाना बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी आग की जरूरत होती है,
0: पर हम तो सुपर शेफ से बात कर रहे हैं। हाँ।
1: आपको कैसे मालूम? सुपर शेफ तो नहीं, लेकिन हम भी किचन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं हम घर पे।
3: क्या आप अपने हैंड्स यहाँ ट्राई करना चाहेंगे?
1: आई डोंट माइंड, अगर आप मुझे कुछ सिखा दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।

0: नहीं एक्चुअली नहीं बनाए।
1: चलिए आज फिर आप ही का टास्क
0: कैसे करना है भाई,
2: थोड़ा
1: सा आपको और ये सूखा रखना पड़ेगा। पैनकेक्स बनाने वाली फिल्म आ रही है
0: So this is very nice, Meenakshi. Let me see once I'm taking the. Yeah, take this. It's very good. You're doing well. And I like that. This is mine. No, my God. You fix this one also.
1: Yes.
0: Meenakshi, well done. Wow. Let's have a puri today.
1: का मैं जिक्र कर रही थी कि जितना इम्पोर्टेंट पूरी का बेलना उसका तले जाना है उतना ही इम्पोर्टेंट है गरम गरम पूरी को खिलाया जाना है। ठंडी पूरी में बात नहीं, मजा नहीं आता।
0: थैंक यू।
1: That's nice. दिल पे जो खराशी है। You're good at serving? तुझको ये तराशी है। खाना बनाना एक आर्ट है, खाना खिलाना भी एक आर्ट है।
0: I have to serve him. ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: अच्छा आप बस ये बताइए, पहचान कर किसने बनाया है? एक मैंने बनाई है, एक सर ने बनाई है, बताइए क्या लग रहा है आपको, किसने कौन सी बनाई?
3: ये वाली सर ने बनाई है।
0: ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो गलत प्रोफाइलिंग वाली बात हो गई। आपको लगा मैडम अच्छी पूरी, बट आप करेक्ट हो।
1: आप खाना भी खाइए प्लीज।
0: हम भी खा रहे
1: हैं भोजन का पूरा।
0: दाल एंड राइस। तो आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। तो हम भी हैं थोड़े बहुत।
1: हम भी हैं थोड़े बहुत।
3: मैम एक्चुअल में हम तो इधर बॉर्डर एरिया पे रहते हैं, आपके फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आयोगे, तो आपको इधर कैसा लग रहा है? इधर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है, कैसा माहौल है, क्या क्या लग रहा है आपको इधर?
1: मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो घर में हम लोग आर्मी की बातें, दफ्तर में आर्मी से रिलेटेड कई बार शूट्स होते हैं, खबरें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इतने नज़दीक से जब देख रहे हैं ना तो सरियल जिसको बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा एक बार के लिए कि ऐसी कंडीशंस में आपको दिन रात जज्बे के साथ जुड़े रहना है।
0: और हमारे बच्चे भी हैं, वो पूछते हैं कि दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं इस टाइम पे, यू नो, और ख़तरा भी उन्हें लगता है। वो पूछते हैं कि हमें कौन देख रहा है और क्या होगा और सिचुएशन बढ़ेगा तो नहीं। तो जब हम बोलते हैं कि नहीं, हमें आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी आपको सलाम भेजते हैं और हम वी आर ऑल वेरी प्राउड।
1: चलिए खाना हो गया, लेकिन अब अपने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
0: अब आके हजम
1: करते हैं। प्यारी बातें आप सबके साथ में हुई। यू एंजॉयड द कन्वर्सेशन।
0: सो नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
1: चलिए लेकिन अभी आज के दिन में हमारे कुछ और प्लान्स हैं आपके बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी, तो अब उस वक्त को आगे बढ़ाते हैं।
0: यस, आइए।

0: सैफ, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं अमन सेतु की तरफ। लेकिन इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से मुजफ्फराबाद 50 किलोमीटर और इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, लेकिन इस जगह तक आम टूरिस्ट भी आ सकते हैं। हम भी इस वक्त आपको लेकर जा रहे हैं झेलम के ऊपर बना हुआ अमन सेतु, लेकिन तैयार किया गया ताकि उस तरफ और इस तरफ लोगों की एक स्मूथ आवाजाही जो है, क्योंकि यहाँ से बस भी गुजरा करती थी। लेकिन 2019 के पुलवामा हमले के बाद, जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को में उतार चढ़ाव आया और सब चीज़ हुई, उसके बाद से ये बंद। लेकिन अभी भी हमें टूरिस्ट आ
1: रहे इस सड़क से आ रही थी। यस, आई थिंक टूरिस्ट को भी हम इंडियंस को दिखाना जरूरी है कि वी आर सेफ।
0: कमान अमन सेतु में कहाँ तक जा सकते हैं लोग? बस ये दिस इज द लास्ट पॉइंट।
2: जो जब हम कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो लास्ट पॉइंट एक कमान अमन सेतु गेट होता है। इसके बाद जो ब्रिज है जो आप सामने देख रहे हैं, ये 2005 में एक रिकॉर्ड टाइम 6 घंटे में बिल्ड किया गया था। ये पूरा ब्रिज इंडियन आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट ने बिल्ड किया हुआ है
1: 6 घंटे में।
2: हाँ जी,
0: 6 घंटे में
2: जी। एंड इसका 2/3 हिस्सा हमारे पास है एंड 1/3 हिस्सा एनिमी के पास है जो कि पीओके है। अभी आप सामने अपने देख सकते हैं ये एनिमी के कुछ लोग, साथ ही साथ उनके फ्लैग्स। अगर आप क्लियरली वहाँ सामने व्यू पॉइंट के पास देखेंगे तो आपको दो डिस्टिंक्ट झंडे दिखेंगे।

0: पहला झंडा आपको पाकिस्तान का झंडा अगर मालूम है वो बाईं तरफ है, और दाहिनी तरफ सफ़ेद धारी और पीले रंग का जो आपको झंडा दिख रहा है वो आज़ाद कश्मीर या पीओके जो हम बोलते हैं उसका झंडा है।
1: इतने करीब कभी इससे पहले आना हुआ?
2: पहली बार। बस वहाँ के वो साइंस भी पढ़ने को मिल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे देखिए, दे रिटन कोट्स बाय इकबाल अबाउट जॉइनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जॉइनिंग अंडर वन, आई थिंक इट्स अ कॉल फॉर ऑल इस्लामिक्स।
1: परवेज साहब, आप हमें एक्सप्लेन करेंगे?
3: मैं क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जो कमांड पोस्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे पीओके वाले साइड में उन्होंने बहुत सारे फ्लैक्सेस लगाए हुए हैं, तो स्लाइटली जो आप देखेंगे ग्रीन रूफ बिल्डिंग के स्लाइटली लेफ्ट साइड एक फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, एक हमारे सामने एक ब्रिज के जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। तो इन सारे फ्लैक्सेस पे इन्होंने इकबाल की पोइट्री लिखी है, इलामा इकबाल जो पॉइंट है। तो स्लाइटली लेफ्ट साइड जो व्यू पॉइंट का जो फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं वो आपके लिए पढ़ूँ, उसमें इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, विच मीन्स के पाकिस्तान इज दैट लाइट विच नेवर एंड्स। एंड जो दूसरी दो लाइन्स लिखी हुई हैं, एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काश्कार तक, विच मीन्स ऑल द मुस्लिम फ्रॉम रिवर नाइन इन इजिप्ट टू काश्कार प्रोविंस इन चाइना मस्ट कम टूगेदर टू प्रोटेक्ट द होली काबा, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द होली काबा वेयर मुस्लिम परफॉर्म हज। एंड जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लैक्स बोर्ड, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट इस बोर्ड पर इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है, तीन लाइंस लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सेकंड लाइन इज़ पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड लास्ट लाइन इज़ कश्मीर पाकिस्तान की शरग, विच मीन्स पाकिस्तान
1: कश्मीर पाकिस्तान की
3: शरग है, शरग, यस, जगलर मैन, जगलर मैन। और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एज अ रिलीजियस कंट्री, जब वो बना वो मजहब के आधार पे बना। एंड सेकंड लाइन इज उसकी रिलेशंस किसी भी कंट्री से या कश्मीर से, वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन है। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जगलर मैन ऑफ पाकिस्तान। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे की है, इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लैक्स बोर्ड लगा के, विच इज़ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दैट रिलीजन डोंट टीच अस टू हेट ईच अदर, एंड इट ऑल्सो शोज द सेक्युलर नेचर ऑफ अवर कंट्री। एंड हमने उर्दू में लिख रखा है ताकि वो पढ़ सकें। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इन फ्लैक्सेस के बारे में, कि ये वाली फ्लैक्सेस और ये वाली फ्लैक्स पेन डाउन बाई सेम पॉइंट, इलामा इकबाल, तो रिप्लाई भी हमने उसी पॉइंट का दिया। तो ये कमान के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग।
1: इसमें मुझे लगता है एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कि आपके पास नज़र तो है लेकिन क्या नज़रिया है देखने का या नहीं है, और जिन लेखक और जिन शायर के जरिए उन्होंने धर्म के आधार पर एक मैसेजिंग की है, उन्हीं शायर की लेखनी से हमने पूरा भारत कैसे एकजुट होता है उसका मैसेज यहाँ पर दिया है। प्राउड टू बी इंडियन। जब आप इस वक्त इन वादियों को देख रहे हैं
2: जी,
1: तो आप सोचिए कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच इंडियन आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है।
2: एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि हमारे देश का एक सबसे खूबसूरत, शायद सबसे खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज थोड़ा सेंसिटिव है और इट्स नॉट ओपन टू फुल टूरिज्म एंड ऑल ऑफ अस, इट्स लिटिल सैड इन अ वे, यू नो। काश ऐसी खूबसूरत जगह में हम, यू नो, पूरा देश कंफर्टेबली आ सकता।
1: कश्मीर तो एक वक्त में फिल्मों की शूटिंग
2: मेरी माँ ने इतने गाने किए, शॉट सो मेनी फिल्म्स, माय पेरेंट्स आल्सो,
1: उनकी डेब्यू फिल्म कश्मीर की कली शॉट इन कश्मीर। मैं आपको अब मेरे ख्याल से देश की सबसे पर्पस ड्रिवन व्हीकल जो है, और एट द सेम टाइम जहाँ पर सिक्योरिटी और भरोसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं, उस व्हीकल की तरफ लेकर जा रही हूँ, इंडियन आर्मी का कैस्पर व्हीकल। आर यू रेडी फॉर इट?
2: एब्सोल्युटली।
1: चलिए, आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की हमने तैयारी की है इंडियन आर्मी के साथ में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो पहनाए जाएंगे। पूरा अनुशासन
2: बना,
1: ऑल सेट,
2: यस। आपको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए है कोई, अगर एक सिचुएशन में कुछ एक्शन हो रहा हो, या
4: जैसे हमारे पास कहीं भी कोई फायर आ रहा है हमारे, तो इस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, हमारे ऊपर फायर डालेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेफली वहाँ तक जाएंगे और उसके ऊपर डायरेक्ट फायर डालेंगे, एम फायर डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सर।
1: आई थिंक एक एक्सपीरियंस हम जरूर उसके ऊपर जाकर भी देखना चाहेंगे, अगर आप परमिशन दें हमें तो।
4: बाहर का व्यू देखिए।
1: ग्राउंड जीरो का रियल एक्सपीरियंस है ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई सेलुलॉइड नहीं है, इट्स रियल एक्सपीरियंस। तो ये सबसे जो डिफिकल्ट टेरेन्स है ये उनमें से एक। सो नॉर्थ कश्मीर में इस वक्त हम हैं, नॉर्थ कश्मीर इज लाइक द गेटवे ऑफ कश्मीर,
2: राइट? ऑल थ्री साइड्स वी आर सराउंडेड बाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट? ओके, एंड दिस वन कॉरिडोर इज ओपन इनटू श्रीनगर, अमेजिंग।
4: सर यहाँ पर हमारा कैस्पर का जो रास्ता है वो शॉर्ट है, यहाँ से हमारी जिप्सी मूव करेंगी और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो मूव करेगी, तो यहाँ पर हम अपना कैस्पर रोक देंगे, यहाँ से अभी हम डाउन होते हैं सर।
1: सर चलिए, व्हीकल से उतरने के बाद व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे लगता है सर चैलेंजेस भी उतने ही हैं, तो हम बताइए अब अगला स्टेप क्या है यहाँ से।
4: अब यहाँ से हमारा ड्रोन मैन कैमरा वाला यहाँ से पूरा अपना उड़ाएगा ड्रोन और पूरा एरिया सर्च करेगा।
1: आइए बढ़ते हैं आगे।

0: मुझे ज़िंदगी के इतने विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर कि इतनी खूबसूरत जगह है और हम एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं कि आर्मी के ऑपरेशन इस जगह पर कैसे होते हैं, टेररिस्ट को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है। अभी रिसेंटली क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज़ पर कि बॉर्डर टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया जाए। बॉर्डर टूरिज्म का पर्पस भी कहीं ना कहीं ये है कि आपको पता हो कि आपके जवान इस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करते हैं।
1: इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द थिंग।
0: जितने गांव हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं,
1: क्या क्या है वो?
0: चलिए अब व्हीकल हमारा रुक गया, यहाँ से अब हम ऑन फुट जर्नी आगे बढ़ाएंगे।
1: ओके।
0: अब आपके ट्रैकिंग का टेस्ट होगा यहाँ पर। चलिए अब ऑन फुट हम जब पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए पैदल चलते हुए जाना और पूरे एरिया को चेक करना?
2: मैम, डिफ़िकल्टी टास्क के ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इलाका है इसको हम बहुत ही रेगुलरली हम डोमिनेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें हमारे जवानों को इतनी डिफ़िकल्टी आती है, बिकॉज हम उसके लिए हमेशा ट्रेन करते हैं,
0: ट्रेन किया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर रेजिडेंशियल भी है, साथ में घर बने हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गाँव का एक इलाका है और रिमोट एरिया एकदम ये है।
2: ये जो विलेज है ये एलसी के बहुत पास है, जो भी हमारे पेट्रोल्स जाती है उसमें हमें विलेजेस भी मिलते हैं, जंगल के पैचेस भी मिलते हैं, नाले भी मिलते हैं, तो अलग अलग एरिया को हम अलग अलग ड्रिल से सैनिटाइज करते हैं।
1: जैसे हम अभी ऑलमोस्ट रोड पे चल रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहाँ पे चेक करना हो,
2: साथ में हमारे साथ हमारा ड्रोन ऑपरेटर है, इट्स लाइक ए हॉकआई।
0: ये अभी पूरा जो गांव है, मतलब यहाँ पर ये खेती भी हो रही है, लोगों के घर भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि क्योंकि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं इस वक्त।
1: कितने नज़दीक हैं हम बॉर्डर से?
0: आप
1: 1 किलोमीटर है मैन।
0: अच्छा, जो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को, कि जो लोग बॉर्डर के इस एरिया में बसे हैं दे आर इनफैक्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स टू एनीथिंग दैट हैपेंस ओवर देयर।
1: सिविल
0: इंजीनियर, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तरफ जैसे कारगिल वॉर के समय भी जो पोर्टर्स थे वहाँ पर, या जिन्होंने सामान ऊपर पहुँचाया, जिन्होंने मदद की, और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया।
2: यहाँ के जो लोकल्स हैं, गुजर्स भी हैं, खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं, उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं, कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते हैं।
0: So they are like the army behind the army.
2: बिल्कुल, वो हमारे extension of hand हो गए basically.
0: Was it fire? Oh, fire.
2: Next is operation.

0: stations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the firer.
1: We are providing. Now, what whenever happens, this kind of situation happens.
2: Take
1: we
2: cover.
1: Have to take cover.
2: All right.
3: आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर?
1: जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हम इतनी ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन को नेगोशिएट कर सकें. साउंड को लोकेट करते हैं हम किस दिशा से आ रही है, और अपनी ट्रेनिंग ऐसी की ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और दुश्मन को न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते
2: हैं. अमेजिंग.
1: अभी हम आगे बढ़ते हैं.
3: ये अभी जो हमने ड्रिल देखा यहाँ पर, ये रील से कितना अलग था?
2: See, yeah, that's one thing. मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्मों में भी, रियल गन फायर की जो आवाज़ होती है ना, इतना लाउड, इतना पावरफुल होता है.
3: तो ये हमारी पेट्रोलिंग का आखिरी पॉइंट है सर?
0: ये आखिरी पॉइंट नहीं है,
2: ठीक है.
0: हाँ, एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं आगे टेरेन बहुत मुश्किल है. हमारा पेट्रोल नॉर्मली नाले तक जाता है. आप वो आयरन ब्रिज देख सकते हैं, उसको क्रॉस करके आगे भी जो हमारा डेजिग्नेटेड पोजिशन है वहाँ तक हम पेट्रोल करने जाते हैं. ये नाला वेस्ट की तरफ से अभी लगभग 1 किलोमीटर दूर से LC है. ये POK से नाला आ रहा है,
3: इस्लामाबाद नाला.
2: वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नो? दिस लुक एट अ नाइस पिकनिक स्पॉट.
3: लेकिन इंसानों के बीच के जो कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, बॉर्डर्स के जो टेंशन्स हैं, वो सब क्या ज़मीन पर सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं, ये उसका एक लाइव उदाहरण है. आपको उसमें एक सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें इस मोड में तो आप कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं. और सेना का यहाँ पर होना और एक पूरा एरिया को प्रोटेक्शन देना
2: बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीनगर पहुंच जाएंगे भाई अगर आपकी आप नहीं थे तो.
0: नहीं पहुंचने देंगे.
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं.
3: ये इंडियन आर्मी. Yes. आपने यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट एरिया में पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जिन जवानों के साथ हमने पेट्रोलिंग की, वो जवान कैसे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो कैसे, कितनी हार्डशिप्स हैं मौसम से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटरेस्टेड हैं आप ये देखने के लिए?
2: बहुत इंटरेस्टेड हूं. इनफैक्ट
3: ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो हम जिम में पसीना बहाते
2: नहीं,
3: हैं
2: नहीं,
3: ये अलग तरह की फिटनेस है. तो आपको मैं इस वक्त सीधे वहीं लेकर जा रही हूँ, और हमारे साथ सर इस वक्त आ चुके हैं जो हमें इस डेमो को एक्सप्लेन भी करेंगे.
4: अभी के हिसाब से सब हमने ये पिक्चर पेंट किया है कि जनरल एरिया रेंज.
3: हाँ.
4: रेंज पे एनिमी के 5-6 मिलिटेंट जो कि आके डिफेंस ले चुके हैं. हमारे इंट के मुताबिक हम अभी अपनी जो ग्राउंड सेना है उसको इनिशियल हाइट में रखा हुआ है. उससे पहले हमने दो अपने आर्म्ड व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस हैं, पहले हम फर्स्ट अटैक फर्स्ट वेव में उनके ऊपर आर्म्ड व्हीकल के साथ करेंगे. वो दुश्मन उसी टाइम पिन डाउन हो जाएगा. पिन डाउन होने के बाद फिर हम अपनी पैदल सेना को इनिशियल हाइट से निकाल के फॉरवर्ड हाइट 1 फॉरवर्ड हाइट 2 उसके बाद फाइनल असॉल्ट. उसका एक डेमो अभी आपको दिखाएंगे हम. तो शुरू करें
3: जी.
2: शुरू करो सर.

0: क्या कुछ फायरिंग हम ट्राई कर सकते हैं?
1: जी
0: शेफ सर, आप ट्रेंड हैं बचपन से।
2: बचपन से
0: चलिए देखते हैं।
3: रेडी अपर ट्रांसिट टर्न रोड फायर। इसका फायर हो जाए दाना ऊपर।
0: कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका?
2: That was tiring.
0: Tiring.
2: That was tiring. Somehow tiring. But exciting.
0: अभी पता चलता है कि आपने टारगेट्स कितने हिट किए हैं। जरूरी तो रिजल्ट जानना है।
2: यहाँ से लग रहा था कि एक आध लगे।
1: नहीं, टारगेट एरिया में तो है। टारगेट तो पकड़ रखा।
0: 10 और कितने नंबर?
1: अभी हिटिंग पे पता चलेगा।
0: अच्छा, वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा कि कितना करीब था टारगेट।
1: गोलियां तो लगी हैं आपकी, चाहे डिस्पर्स हो गए लगी हैं। तो जो इस सर्कल में उसका एक पॉइंट
2: है।
0: क्वाइट गुड, आई मस्ट से टू माय व्यूअर्स आल्सो, क्वाइट गुड। जवानों की ट्रेनिंग आपने देख ली, लेकिन

0: अब कुछ स्ट्रॉन्ग जवान
1: स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देखी जाए और क्रिकेट तो आपके खून में है
0: जी। अभी ये मुझे अपने आप को एम्बैरेस करने का फुल चांस है।
1: चलिए क्रिकेट का फील्ड तैयार है। सैफ सर ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे आर्मी की फील्डिंग सेट है
0: yes.
1: और सिनेमा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं
0: हाँ,
1: और मैं तो कह रही हूँ पटौदी खानदान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
0: भाई धीरे से डालो
1: सर। आपका क्रिकेट का एक्सपीरियंस
0: मुझे लगता है कि दुनिया में से बहुत जो खूबसूरत ग्राउंड्स हैं
1: हाँ।
0: ये एक होगा।
1: एंड आर्मी की जो तैयारी है, जो टीम्स हैं, उन सबके अंदर जो एक जज्बा है,
0: इट्स सो नाइस। अगेन क्रिकेट इज अनदर बॉन्डिंग स्पोर्ट। व्हेन यू प्ले नाउ विद पीपल इट मेक्स यू रिस्पेक्ट देम ऑन अ डिफरेंट लेवल।
1: तो आज का पूरा दिन कैसा रहा आपका?
0: मुझे बहुत अच्छा, बहुत मजा आया।
1: तो हमारी दिन की एक्टिविटीज का पार्ट यहाँ खत्म होता है, लेकिन जब आपने कहा कि आपको इतना अपनापन महसूस हुआ और यहाँ पर जितनी एक्टिविटीज आपने की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी जिसको हम देखेंगे आज की रात में और उसको जब आप अटेंड करेंगे तो आप अपने साथ बहुत सारी यादें आज लेकर जाने वाले हैं, ये मैं आपको अभी गारंटी कर सकती हूँ।
0: डॉक्टर आई एम एक्साइटेड।
1: अपने सारे गाने और डांसेस याद है ना आपको?
0: ओह नो, अभी मुझे डर लगा है।
1: ऐसा ना हो कि रियल टास्क कब आए आपके सामने।
0: आई थिंक दैट्स द स्कैरी पार्ट। ये सब ठीक था,
1: लेकिन आप मिलेंगे स्टेज पर।

0: मैंने कुछ घंटे के लिए आपकी ज़िंदगी आज जी है और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल है और हर मुश्किल में आपका जज्बा कायम रहता है और इस बात का मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं अपनी पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली मेरी परिवार और पूरे देश की तरफ से आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। आपकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ रहते हैं।
1: मैं मंच पर कुछ जवानों को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने स्पेशली आपके लिए आज इस कार्यक्रम के लिए तैयारी की है, अपने उन इमोशन को अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी लांस नायक अंकित जी को। प्लीज आइए अपनी टीम के साथ। बहुत स्वागत है आपका मंच पर।

0: वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन।
1: एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम पूरी टीम को थैंक यू भी कहेंगे।
0: सो मच।
1: तो अब स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहूंगी सिपॉय साहिल नैन जी को, और उन्होंने आज एक परफॉर्मेंस तैयार किया है।
2: Okay.
1: How excited you are for that performance?
2: I'm very excited to see.
1: और ऐसा लग रहा है कि आप ही की फिल्म का कोई गाना है।

0: बहुत खूब,
1: बहुत खूब भाई।
0: भाई तालियां तो नहीं सुनाई दी हैं क्योंकि जिस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ है तो यूजुअली होता है क्या, हम लोग कहते हैं नहला था या दहला था, तो नहले पर दहला था। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल मुझे और पूछना है, सैफ अली खान के सामने उन्हीं के डांस को आपको उन्हीं के अंदाज में करना है, ये तो बट कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, इसे तो मानना पड़ेगा।
2: यस मैम।
1: अरे यस मैम। नहीं बहुत अच्छा किया उन्होंने।
0: आपने जब आप जब इन्हें परफॉर्म करते हुए देखे थे, आपको क्या अपना पूरा शूट याद तो नहीं आ रहा था उस समय?
1: मुझे वो शूट याद आया।
0: Anything interesting that you want to share?
1: The shoot was interesting. वो गाना इतना अच्छा था, लेकिन कोरियोग्राफर ने कहा कि कुछ मूव्स बताए, लेकिन ज्यादातर उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से करो।
0: हाँ।
1: तो वो ऐसी ऐसी बना। और अगर आपने मतलब on the spot makeup किया,
0: आप ही हैं।
1: आपने देखा वो शुरू होता है वो विस्की ग्लास के साथ।
0: हाँ।
1: वो इतना फेमस हो गया एनिमल में जो बॉबी डियोल ने सीन किया था, लेकिन एक्चुअली वो इस गाने में था सबसे पहले। So that was the
0: trendsetter,
1: beginning.
0: Huh?
1: Trendsetter.
0: Thank you so much, sir. Thank you. And all the very best.
1: All the best.
0: डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, अब थोड़े से क्यू एंड ए करते हैं, कुछ सवाल जवाब। आप सब लोग तैयार हैं कुछ सवाल जवाबों के लिए? और क्वेश्चन आंसर में आपकी रियल लाइफ से लेकर, आपके रियल लाइफ से लेकर, आपके एक्सपीरियंसेस पर ये सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए खास तौर पर हमने कुछ येस और नो प्रिपेयर किया है, कौन सा हाँ है, किस सवाल का जवाब, किस सवाल का जवाब ना है। आप लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ? जयदीप जी, प्रवीण जी, शिवम जी और दीपक जी,
3: गुड इवनिंग जी।
0: गुड इवनिंग।
4: ये एक बैठे बैठे सवाल याद आ गया।
0: क्या
4: आपको कभी किसी रोल या शो को मना करने के बाद में आपको पछतावा मिला है
0: कभी किसी रोल या किसी शो?
1: आई अंडरस्टूड। हाँ।
0: यस और

0: No. But you have to show the placard. Yes.
1: Yes, Shahid. Yeah.
2: Yes.
0: Deepak ji, aap hain yahan par abhi?
3: Ji.
0: Okay. He's here.
3: Good evening, ma'am. Good evening, sir.
1: Good evening.
3: Saab sir, sawal aapse hai ki kya pehli nazar mein pyar ho sakta hai?
0: Oh. Yes or no? I think yes.
1: Yes, I think so. हाँ, आई थिंक सो. लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टू फॉल इन लव, मतलब प्यार में गिरना.
3: जी सर,
1: इतना मुश्किल नहीं होता. मुश्किल नहीं होता, मतलब अपने बस में नहीं होती बात.
3: जी सर.
1: तो आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें रहना, उसको निभाना, ये मर्दों वाली बात है.
0: नहीं, लेकिन एक चीज बताइए आप पहले.
1: जी.
0: ये जो पहली नजर का प्यार जिसको आपने यस कहा है, ये आपको कौन सी उम्र में हुआ था?
1: वो तो बहुत रिसेंटली हुआ.
0: बहुत रिसेंटली?
1: आई मीन क्या अभी एक्चुअली हो गए?
0: Recently तो नहीं है.
1: No, no, with my, yeah, it's been, God, it's been almost 20 years.
0: Yeah.
1: With my wife.
0: Yes. He's playing safe.
1: Of course. Always safe.
3: Yes. Thank you.
1: Yes. And she is also a huge supporter of the army.
3: Yes. Thank you, sir.
1: She's very happy I'm here. And unki taraf se, lots of love to all of you.
3: Thank you, sir.
4: Yes. Jain sir.
1: जय हिंद.
0: जय हिंद.
4: वेलकम टू उरी सर.
1: थैंक यू.
4: सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बढ़ती उम्र में आपकी फिटनेस का राज क्या है सर? क्योंकि आर्मी में फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुछ टिप्स बताइए कि आप हमारी आर्मी को भी.
1: भाई, मैं अपने आपको ऐसे सिचुएशंस में डाल देता हूँ जैसे जय जवान, जहाँ मुझे पहाड़ों पर चढ़ना पड़े और बड़ी बड़ी मशीन गन्स चलाना पड़े, तो आदमी को फिट रहना चाहिए. नहीं, आई थिंक सबके साथ फिटनेस का दौर चल रहा है आजकल, और एज हम सिर्फ एक नंबर मानते हैं जैसे कहते हैं लोग, और अच्छा खाना खाना, डाइट, हेल्थी खाना खाना, एक्सरसाइज करना, और फिट रहना, और ड्रिंक्स पे एकदम कंट्रोल करना.
0: आइए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और एक और डांस परफॉर्मेंस सैफ सर की एक और फिल्म से यहाँ पर. जिस गाने से आप आज दिन भर डर रहे थे, अब नंबर उस गाने का है. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी नायक अर्जुन और उनकी टीम को. आइए, बहुत स्वागत है आपका.

0: ओले भी बरस गए, बर्फ भी बरस गई, मुझे लगता है सब बरस गया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा आपका, थैंक यू सो मच।
1: वेल डन, कांग्रेचुलेशंस।
0: अगला है परफॉर्मेंस
1: जी,
0: और इस परफॉर्मेंस के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार गजेंद्र और उनकी टीम को। आइए सब, वेलकम ऑन स्टेज।

0: सॉरी मैंने आपका गाना बिगाड़ा।
1: अपने बहुत खूब, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर टीम फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट। दिल चाहता है।
2: थैंक यू
0: सो गुड।
1: तमंचे पर डिस्को परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर इनवाइट करूंगी हवलदार अरुण रोआ और उनकी टीम को। आइए प्लीज।

कमंचे पर डिस्को आपने जो करके दिखाया है अभी, एकदम महफिल को आपने ऐसे रेडी कर दिया है कि जिसके बाद हम नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाएंगे। तो हम लोगों का हमेशा जब भी ये कार्यक्रम होता है जय जवान का, महफिल खत्म हमेशा आते आते भांगड़े पर जाती है। पंजाब की वाइब के बिना तो पार्टी अधूरी है, है या नहीं है बताइए? हाँ, पंजाब की वाइब के बिना पार्टी अधूरी है, नहीं है? भांगड़ा भांगड़ा देखना है आपको, किस किस को देखना है? मुझे पीछे से जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं बुलाऊंगी नहीं स्टेज पे। थैंक यू सो मच, अगली टीम को स्टेज पर इनवाइट करूंगी। और भांगड़ा परफॉर्मेंस के लिए नायक अजय जी और आपकी टीम प्लीज आइए स्टेज पर।

0: बहुत खूब, आज तो पूरी बॉयज पार्टी हो गई है यहाँ.
1: थैंक यू मैम.
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. बहुत खूब, कंग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे.
0: आपका परफॉर्मेंस ने तो एकदम बिल्कुल चार चांद लगा दी हमारे आज की महफिल पर. और आपको मैं देख रही हूँ, आप हर डांस में आपने परफॉर्म किया है.
2: पता था, हम खून में
0: हैं. चलिए ये परंपरा आगे भी ऐसी चलती रहे, यही मेरी बेस्ट विशेस है आपके लिए.
1: थैंक यू. बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
0: जवानों के बीच में जब आप हों तो उसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उस पल के लिए, उस लम्हे के लिए, उस वक्त के लिए आप भी जवान हो जाते हैं. तो हमें जवान बनने का ये मौका देने के लिए, इसे मैं यूथ के एंगल से नहीं कह रही हूँ, जय जवान के एंगल से कह रही हूँ, हमें अपने बीच होकर जवान फील कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस की इस खास अवसर पर, आज इस कार्यक्रम में, इस सफ़र पर हम लेंगे विराम, लेकिन इस स्पिरिट के साथ कि आपके पास जब जब आने का मौका मिलेगा, हर बार आएंगे आपसे नया कुछ सीखने के लिए, आपके साथ नया वक्त शेयर करने के लिए. और सैफ सर,
1: तो जाते जाते आप सबके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, जो आई थिंक आप लोगों के लिए परफेक्ट है. कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं.
0: क्या बात है.
1: Right.
0: That's our Indian Army.
1: Really, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना प्यार मिला आपसे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में. All the very best, lots of love from all of us to all of you. Okay, bless you.
0: Thank you so much. Thank you.
3: Clap.
4: Bole clap.
1: I love this clap. I'm gonna miss it.
4: अगर पट्टी गई तो
5: कैसे जवाब दो?
6: No budget film. Bothering you. You can sit on underneath the tree and just direct us.
1: Ek aur karo. See you.

0: या कोई संबंध नहीं है, जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार से बातें बोलने का। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
1: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
2: तो एक, बीच में
1: एक, एक, कांग्रेस नेतृत्व मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
3: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
4: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
5: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
4: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
5: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
4: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
3: also in the Red Fort address, the Prime Minister

0: Has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023, but its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
2: A call for greater representation, a call for political consensus, and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
1: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein hamari mahilaye janpratinidhi ban karke desh ka margdarshan kar rahi hain. समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है.
2: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
3: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर.
4: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
2: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
5: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी. हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं. हम उसके खिलाफ है. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
2: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
6: हाँ, 454 ना 2-2.
2: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
0: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: guys, so for Independence Day, let's go around asking people what their favorite Independence Day memories are and what they think of living in Bharat. What is your most cherished or most favorite Independence Day memory?
1: जब हम छोटे थे, मैं सही बताऊं, पहले बड़ा क्रेज होता था पतंग उड़ाने का.
2: When I was in school, we used to get laddus and we used to hoist flag.
3: Independence Day पे जो हम ये kites वगैरह जो हम ये उड़ाते हैं, तो अभी इस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं. बट तो हमें ये बचपन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो यही सारी मेमोरीज हम मिस कर.
0: देश से बाहर जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको इंडिया की याद सबसे क्या आती है?
2: इंडियंस एंड इंडियन फूड.
1: इस देश की मिट्टी में ऐसा जुनून है कि लोग बाहर जाके भी अपने देश को याद रखते हैं और अपने देश के लिए उनकी आंखों में आंसू आते हैं वापस आने के लिए.
0: माय गॉड, क्राइंग हियरिंग यू. या फिर अभी आज कोई बच्चे सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हैं अपने देश के बारे में सोचने के लिए?
4: इंडिया के बारे में सीखे, कल्चर के बारे में सीखे कि हमारे में कितने नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं.
1: मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने देश के इतने महत्वपूर्ण डे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ये, उसको अपने बच्चों के साथ इतिहास में उनको बताया जाए कि पहले आज से 80 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की क्या हालत थी और हमने इन 80 सालों में क्या किया है.
2: इंडिया इज़ अ होम, इट्स अ सोल.
0: हाउ कैन वी नॉट एंड द डे विद छोले भटूरे, मोमोज, खीर एंड लस्सी व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे? सो इफ यू आर हियर टुडे, मेक श्योर यू आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, मेक अ होल डे आउट ऑफ इट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे.
5: जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया.
6: Well, that's all from me. For all the latest updates from India and around the world, keep watching NDTV. And remember, don't be afraid to be in the limelight. With camera person Ritvik Gugnani, this is Mayank Chaudhary. See you next weekend.

0: longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
1: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
2: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
3: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
4: तो भी बीच में
3: एक एक कांग्रेस नेतृत्व तो मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
5: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Viksit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
6: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
7: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
6: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
7: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
6: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
5: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
7: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
6: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
7: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है.
6: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
4: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर.
8: इश्यू इज द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वीमेन रिजर्वेशन. दे वांट टू ब्रिंग इन डिलिमिटेशन अंडर द गार्ब ऑफ वीमेन रिजर्वेशन.
6: द कांग्रेस सेज द क्वेश्चन इज नॉट वेदर वीमेन डिजर्व रिजर्वेशन. द क्वेश्चन दे आर्ग्यू इज व्हाई लिंक इट टू डिलिमिटेशन.
9: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ है. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
6: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
7: हाँ, 454 ना 2-2.
6: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल क्लियर द लोकसभा ऑन सितंबर 20th विद एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
5: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The near

0: Upper Dibang Valley, and due to that, there was flash floods and landslide. And in that incident, several army jawans are missing. Basically, two temporary camps of army outpost in that area, which is not very far from the line of actual control that India shares with the Tibet Autonomous Region of China. In that area, you have a lot of army presence and two temporary army shelters, which are where you have forces in less number. They were washed away because of the flash flood, and in which two army jawans were rescued. But what we have been given to understand by authorities is that at least five or more than that, army has not specified the number as of now officially. These army jawans are missing. There is a massive search and rescue operation which continues there.
1: All right, Ratnadeep, thank you very much for getting us those details. Moving on, let's tell you about the big political debate that erupted today in the national capital. While at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. Now, it was sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the rendition continued. The BJP has alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
2: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया. और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है.
3: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया. हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका. ये बहुत दुर्भाग्य.
4: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए.
3: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए. अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास
4: जी,
3: तो कार्रवाई तो होगी.
5: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
6: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए.
7: लेकिन आज तो पूरा बजा
6: कह रहा हूँ चलाना चाहिए
7: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
8: ये कोई मुद्दा है ही नहीं 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है. आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी.
9: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारे हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है. इनका कोई संबंध नहीं है. जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है. इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा.
10: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है. तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा.
11: तो भी बीच में
10: एक, एक, कांग्रेस नेतृत्व मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है. वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के. तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं. ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है. तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं.
1: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
12: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
13: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे. हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है. हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं. इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा.
12: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
13: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
12: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। India's next generation must have the skills, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
1: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
13: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए।
12: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
13: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है।
12: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
6: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है। अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर?
11: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
12: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
14: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है।
12: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो।
15: हाँ, 454 ना 2-2।
12: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023। The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation.
16: But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
1: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress but Dimagi Naxal Congress.
1: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
2: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
3: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो एडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
4: तो एक, बीच में एक, एक, कांग्रेस नेतृत्व
3: एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतनी जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादर वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादर वतन है, तो हम उस मादर वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
5: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
6: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
7: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
6: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
7: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होश करने वाला है। इस चुनौती से हमें

0: from artificial intelligence to athletics. The message was clear. India's next generation must have the skills, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme. Isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
1: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
3: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
2: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा
3: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
4: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर.
5: द इश्यू इज द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वीमेन रिजर्वेशन. दे वांट टू ब्रिंग इन डिलिमिटेशन अंडर द गार्ब ऑफ वीमेन रिजर्वेशन.
3: द कांग्रेस सेज द क्वेश्चन इज नॉट वेदर वीमेन डिजर्व रिजर्वेशन. द क्वेश्चन दे आर्ग्यू इज व्हाई लिंक इट टू डिलिमिटेशन.
6: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी. हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
3: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
7: हाँ, 454 ना 2-2.
3: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
1: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kargar to mark India's

0: army jawans were rescued, but what we have been given to understand by authorities is that at least five or more than that, army has not specified the number as of now officially. These army jawans are missing. There is a massive search and rescue operation which continues there.
1: All right, Ratnadeep, thank you very much for getting us those details. Moving on, let's tell you about the big political debate that erupted today in the national capital. Well, at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. Now, it was sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the rendition continued. The BJP has alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging that the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
2: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
3: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
4: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
3: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
4: जी,
3: तो कार्रवाई तो होगी।
5: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
6: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
7: लेकिन आज तो पूरा बजा है,
6: कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
8: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
7: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
9: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
10: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
11: तो एक, बीच में
10: एक, एक, कांग्रेस नेतृत्व तो मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
1: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
12: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
13: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
12: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
13: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
12: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
1: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
13: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
12: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
13: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया.
12: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
6: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर?
11: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
12: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
14: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
12: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
15: हाँ, 454 ना 2-2.
12: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
1: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: This was Tamil Nadu Chief Minister Vijay's first Independence Day after taking oath. Among those in attendance, one celebrity presence immediately caught attention, actor Trisha. Seated alongside Vijay's parents, S. A. Chandrasekhar and Shobha Chandrasekhar, Trisha's appearance comes amid the intense political spotlight. She's been under constant attack from Vijay's opponents, from double-meaning jibes to her intent being questioned.
1: நம்ம முதல்வர் விஜயின் அன்புக்குரியவராக அன்னி திரிஷா மேடம் அவர்களை எப்போது தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதல்வராக நியமனம் செய்து அறிவிப்பு வெளிவரும் என்று அதிர்ச்சியோடு ஆவலோடும் காத்திருக்கிறது அன்னை தமிழகம்.
0: But on Saturday, none of this mattered. For the celebrations, Trisha chose a simple yet graceful traditional outfit. She wore a gold-toned sari and kept her styling understated, with minimal jewellery complementing the look. A floral gajra in her hair added a classic touch. Amid the political attacks and trolling, Trisha looked quite at ease. Trisha's presence was a response to these attacks and trolls. She waved enthusiastically as the Chief Minister arrived for the state event. One video that has drawn particular attention shows Trisha saluting Chief Minister Vijay as he passes by in a jeep while receiving the Guard of Honor. She clicked pictures through the ceremony. As Vijay marked his first Independence Day as Chief Minister, Trisha's presence sent out its own quiet message. She was there, and she was firmly in the front row. Bureau Report, NDTV.
2: Shifting our focus to more breaking news that's just coming in, we learn that casualties have now been confirmed in the Arunachal landslide incident. There are four laborers that have been confirmed dead in a landslide that happened near the Nacho in Arunachal Pradesh's upper district, though only three bodies have been recovered so far. The search and rescue operations remain underway with the SDRF assistance. One injured worker has been referred to a hospital in Itanagar for treatment. Now, the army choppers, we learn, have been deployed for the rescue operations. Meanwhile, search for those missing have been continuing amid challenging weather conditions as well. Ratnadeep is joining us on the phone line. Ratnadeep, what more details can you share with us as far as the rescue operations is concerned?
3: Well, in fact, in Arunachal Pradesh for the past 24 hours, there have been heavy rains and there is an orange alert for more rains. And this incident happened on yesterday, in fact, when there was a massive landslide in upper Subansiri district in an area which is under the Nacho police station, where the initial information was that at least four laborers were feared dead. And then the authorities, after hours of rescue operations, they have confirmed this evening that four laborers were confirmed dead, out of which three dead bodies have been recovered. The attempts have been made for recovery of the other body. In fact, this not only this incident, but also there has been a cloudburst in Upper Dibang Valley, and due to that, there was flash floods and landslide. And in that incident, several army jawans are missing. Basically, two camps, two temporary camps of army outpost in that area, which is not very far from the line of actual control that India shares with the Tibet Autonomous Region of China. In that area, you have a lot of army presence and two temporary army shelters, which are where you have forces in less number. They were washed away because of the flash flood, and in which two army jawans were rescued. But what we have been given to understand by authorities is that at least five or more than that, army has not specified the number as of now officially. These army jawans are missing. There is a massive search and rescue operation which continues there.
2: All right, Ratnadeep, thank you very much for getting us those details. Moving on, let's tell you about the big political debate that erupted today in the national capital. While at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. Now, it was sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the redemption continued. The BJP has alleged that the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
4: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
5: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य।
6: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए,
5: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
6: जी,
5: तो कार्रवाई तो होगी।
7: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
8: 37, 28 अक्टूबर कलकत्ता का सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
9: लेकिन आज तो पूरा बजा
8: है, कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
10: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
11: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
12: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
9: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
13: तो भी बीच में
9: एक कांग्रेस नेतृत्व, एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
2: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
14: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
15: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
14: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
15: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
14: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
2: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's

0: Political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023, but its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
2: A call for greater representation, a call for political consensus, and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
1: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein hamari mahilaen janpratinidhi ban karke desh ka margdarshan kar rahi hain. समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है.
2: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
3: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर?
4: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
2: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
5: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी. हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं. हम उसके खिलाफ है. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
2: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 डेकेड्स अगो.
6: हाँ, 454 ना 2-2.
2: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल क्लियर द लोकसभा ऑन सितंबर 20th विद एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी. अ डे लेटर द राज्यसभा पास्ड इट यूनानिमसली विद 214 वोट्स इन फेवर. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
0: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: A big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the redemption continued. The BJP has alleged the leaders were signaling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
1: Hum Congress ki sarvoch netrutv, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
2: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
3: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, अब मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
2: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो जी, तो कार्रवाई तो होगी।
4: Today it's a matter of national shame that the leader of opposition and Madam Sonia Gandhi skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian, and if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions which are a matter of pride for all Indians.
5: 1937 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
6: लेकिन आज तो पूरा बजा है,
5: कह रहा हूँ चलाना चाहिए।
7: The Congress Party is not a patriotic party. The Congress Party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress Party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress Party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress Party is not pro-India. The DNA of the Congress Party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress Party is suffering from the Magi Naxal mindset which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress but the Magi Naxal Congress.
8: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
9: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
6: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
10: तो भी बीच में एक एक कांग्रेस नेतृत्व,
6: एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार।
0: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Viksit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
11: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
12: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
11: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
12: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
11: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर: इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
0: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
12: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
11: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
12: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा
11: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
5: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते हैं उस पर बिल पर?
13: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
11: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
14: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी. हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं. हम उसके खिलाफ है. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
11: And that brings the spotlight back to a law that was passed by Parliament nearly 3 decades ago.
15: हाँ, 454, ना 2-2.
11: The story goes back to September 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
0: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the redemption continued. The BJP has alleged the leaders were signalling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
1: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
2: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
3: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
2: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
3: जी,
2: तो कार्रवाई तो होगी।
4: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
5: 37, 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
6: लेकिन आज तो पूरा बजा है,
5: कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
7: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
8: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था, उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन, जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का, उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
9: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध नहीं है। जो 50 साल तक जो है

0: अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार से बातें बोलने का। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
1: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
2: तो भी बीच में एक एक कांग्रेस नेतृत्व,
1: मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
3: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
4: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
5: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
4: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
5: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
4: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
3: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
5: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
4: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
5: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा
4: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
6: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते हैं उस पर बिल पर?
7: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
4: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
8: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी. हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं. हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
4: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
9: हाँ, 454 ना 2-2.
4: द स्टोरी गोज बैक टू सितंबर 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
3: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: appearance, S.A. Chandrasekhar and Shobha Chandrasekhar. Trisha's appearance comes amid the intense political spotlight. She's been under constant attack from Vijay's opponents, from double-meaning jibes to her intent being questioned.
1: நம்ம முதல்வர் விஜயின் அன்புக்குரியவராக அன்னி திரிசா மேடம் அவர்களை எப்போது தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதல்வராக நியமனம் செய்து அறிவிப்பு வெளிவரும் என்று அதிர்ச்சியோடு ஆவலோடும் காத்திருக்கிறது அன்னை தமிழகம்.
0: But on Saturday, none of this mattered. For the celebrations, Trisha chose a simple yet graceful traditional outfit. She wore a gold-toned sari and kept her styling understated, with minimal jewellery complementing the look. A floral gajra in her hair added a classic touch. Amid the political attacks and trolling, Trisha looked quite at ease. Trisha's presence was a response to these attacks and trolls. She waved enthusiastically as the Chief Minister arrived for the state event. One video that has drawn particular attention shows Trisha saluting Chief Minister Vijay as he passes by in a jeep while receiving the Guard of Honor. She clicked pictures through the ceremony. As Vijay marked his first Independence Day as Chief Minister, Trisha's presence sent out its own quiet message. She was there, and she was firmly in the front row. Bureau Report, NDTV.
2: Shifting our focus to more breaking news that's just coming in, we learn that casualties have now been confirmed in the Arunachal landslide incident. There are four laborers that have been confirmed dead in a landslide that happened near the Nacho in Arunachal Pradesh's upper district, though only three bodies have been recovered so far. The search and rescue operations remain underway with the SDRF assistance. One injured worker has been referred to a hospital in Itanagar for treatment. Now, the army choppers, we learn, have been deployed for the rescue operations. Meanwhile, search for those missing have been continuing amid challenging weather conditions as well. Ratnadeep is joining us on the phone line. Ratnadeep, what more details can you share with us as far as the rescue operations is concerned?
3: Well, in fact, in Arunachal Pradesh for the past 24 hours, there have been heavy rains and there is an orange alert for more rains. And this incident happened on yesterday, in fact, when there was a massive landslide in upper Subansiri district in an area which is under the Nacho police station, where the initial information was that at least four laborers were feared dead. And then the authorities, after hours of rescue operations, they have confirmed this evening that four laborers were confirmed dead, out of which three dead bodies have been recovered. The attempts have been made for recovery of the other body. In fact, this not only this incident, but also there has been a cloudburst in Upper Dibang Valley, and due to that, there was flash floods and landslide. And in that incident, several army jawans are missing. Basically, two camps, two temporary camps of army outpost in that area, which is not very far from the line of actual control that India shares with the Tibet Autonomous Region of China. In that area, you have a lot of army presence and two temporary army shelters, which are where you have forces in less number. They were washed away because of the flash flood, and in which two army jawans were rescued. But what we have been given to understand by authorities is that at least five or more than that, army has not specified the number as of now officially. These army jawans are missing. There is a massive search and rescue operation which continues there.
2: All right, Ratnadeep, thank you very much for getting us those details. Moving on, let's tell you about the big political debate that erupted today in the national capital. While at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. Now, it was sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the redemption continued. The BJP has alleged that the leaders were signaling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
4: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
5: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य।
6: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, आप मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए?
5: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
6: जी,
5: तो कार्रवाई तो होगी।
7: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
8: 37, 28 अक्टूबर कलकत्ता का सीडब्ल्यूसी रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
9: लेकिन आज तो पूरा बजा
8: है, कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
10: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
11: Ye koi mudda hai hi nahi. 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
12: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध ही नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
9: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
13: तो भी बीच में
9: एक कांग्रेस नेतृत्व, एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का भी रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
2: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is, the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
14: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
15: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
14: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
15: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
14: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर। इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
2: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the centre of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
15: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
0: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
15: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है.
0: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
8: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी है. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते उस पर बिल पर.
13: द इश्यू इज द इंटेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वीमेन रिजर्वेशन. दे वांट टू ब्रिंग इन डिलिमिटेशन अंडर द गार्ब ऑफ वीमेन रिजर्वेशन.
0: द कांग्रेस सेज द क्वेश्चन इज नॉट वेदर वीमेन डिजर्व रिजर्वेशन. द क्वेश्चन दे आर्ग्यू इज व्हाई लिंक इट टू डिलिमिटेशन.
16: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी की हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
0: एंड दैट ब्रिंग्स द स्पॉटलाइट बैक टू अ लॉ दैट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट नियरली 3 decades अगो.
15: हाँ 454 ना 2-2.
0: द स्टोरी गोज बैक टू September 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favor. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
2: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: and Shobha Chandrasekhar. Trisha's appearance comes amid the intense political spotlight. She's been under constant attack from Vijay's opponents, from double-meaning jibes to her intent being questioned.
1: நம்ம முதல்வர் விஜயின் அன்புக்குரியவராக அன்னி திரிசா மேடம் அவர்களை எப்போது தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதல்வராக நியமனம் செய்து அறிவிப்பு வெளிவரும் என்று அதிர்ச்சியோடு ஆவலோடும் காத்திருக்கிறது அன்னை தமிழகம்.
0: But on Saturday, none of this mattered. For the celebrations, Trisha chose a simple yet graceful traditional outfit. She wore a gold-toned sari and kept her styling understated, with minimal jewellery complementing the look. A floral gajra in her hair added a classic touch. Amid the political attacks and trolling, Trisha looked quite at ease. Trisha's presence was a response to these attacks and trolls. She waved enthusiastically as the Chief Minister arrived for the state event. One video that has drawn particular attention shows Trisha saluting Chief Minister Vijay as he passes by in a jeep while receiving the Guard of Honor. She clicked pictures through the ceremony. As Vijay marked his first Independence Day as Chief Minister, Trisha's presence sent out its own quiet message. She was there, and she was firmly in the front row. Bureau Report, NDTV.
2: Shifting our focus to more breaking news that's just coming in, we learn that casualties have now been confirmed in the Arunachal landslide incident. There are four laborers that have been confirmed dead in a landslide that happened near the Nacho in Arunachal Pradesh's upper district. Though only three bodies have been recovered so far, the search and rescue operations remain underway with the SDRF assistance. One injured worker has been referred to a hospital in Itanagar for treatment. Now, the army choppers, we learn, have been deployed for the rescue operations. Meanwhile, search for those missing have been continuing amid challenging weather conditions as well. Ratnadeep is joining us on the phone line. Ratnadeep, what more details can you share with us as far as the rescue operations is concerned?
3: Well, in fact, in Arunachal Pradesh, for the past 24 hours, there have been heavy rains, and there is an orange alert for more rains. And this incident happened on yesterday, in fact, when there was a massive landslide in upper Subansiri district in an area which is under the Nacho police station, where the initial information was that at least four laborers were feared dead. And then the authorities, after hours of rescue operations, they have confirmed this evening that four laborers were confirmed dead, out of which three dead bodies have been recovered. The attempts have been made for recovery of the other body. In fact, this not only this incident, but also there has been a cloudburst in Upper Dibang Valley, and due to that, there was flash floods and landslide. And in that incident, several army jawans are missing. Basically, two temporary camps of army outpost in that area, which is not very far from the line of actual control that India shares with the Tibet Autonomous Region of China. In that area, you have a lot of army presence and two temporary army shelters, which are where you have forces in less number. They were washed away because of the flash flood, and in which two army jawans were rescued. But what we have been given to understand by authorities is that at least five or more than that, army has not specified the number as of now officially. These army jawans are missing. There is a massive search and rescue operation which continues there.
2: All right, Ratnadeep, thank you very much for getting us those details. Moving on, let's tell you about the big political debate that erupted today in the national capital. While at the Congress headquarters in Delhi on Independence Day, the version of Vande Mataram was sung. Now, it was sung in a manner that it triggered a big political controversy. The political fight erupted after a video showed Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, and the leader of opposition Rahul Gandhi making gestures while the rendition continued. The BJP has alleged the leaders were signaling for the song to be stopped, alleging the Congress party till date has still resisted the full redemption of Vande Mataram and have insulted the national song. Meanwhile, on the other hand, the Congress party has denied any such attempt, saying that Sonia Gandhi was only asking for a chair for Mallikarjun Kharge, who had been standing for quite some time. The footage subsequently sparked a wider political row over Congress's position on the full redemption of the national song. Here's what both sides have to say on the big political controversy.
4: हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया, और यदि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
5: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
6: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, अब मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
5: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
6: जी,
5: तो कार्रवाई तो होगी।
7: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions, which are a matter of pride for all Indians.
8: 37, 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
9: लेकिन आज तो पूरा बजा है,
8: कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
10: The Congress party is not a patriotic party. The Congress party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress party is not pro-India. The DNA of the Congress party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress party is suffering from Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress, but Dimagi Naxal Congress.
11: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था, उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन, जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का, उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
12: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार है बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
9: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पे विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
13: तो भी बीच में एक एक कांग्रेस नेतृत्व,
9: मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादरे वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादरे वतन है, तो हम उस मादरे वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार।
2: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is the mindset problem, and a major push to put Yuva Shakti at the heart of a Vikasit Bharat vision. From AI skills and free coaching to a nationwide sports talent hunt, the Prime Minister has laid out a roadmap aimed at equipping India's young population for the future.
14: From the ramparts of the Red Fort, PM Modi delivered two key messages: a warning against the Dimagi Naxal mindset and a powerful call to India's youth to lead the march towards a Viksit Bharat. Prime Minister Modi said the era of red terror has been defeated, but he warned against the ideology behind it. Dimagi Naxal mindset continues to exist.
15: देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा।
14: But the Prime Minister's message was beyond Dimagi Naxal. At its core was a bigger call: to harness the power of Yuva Shakti and make India's youth the driving force of its future. Modi announced AI skills training for 1 crore young Indians, preparing them for an economy increasingly driven by technology. He also announced free online coaching aimed at widening access to learning and competitive opportunities. And the youth push extends beyond academics. A nationwide sports talent hunt will seek to identify promising athletes among children aged 5 to 15.
15: हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। इस चुनौती से हमें और
14: फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एथलेटिक्स द मैसेज वाज क्लियर: इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन मस्ट हैव द स्किल्स, opportunities and confidence to compete with the world. Modi also highlighted the expansion of universities and medical seats as part of his broader Viksit Bharat vision. Two messages from the Red Fort, one larger theme: isolate the Dimagi Naxal mindset and unleash India's Yuva Shakti to harness the energy of young India and build a Viksit Bharat. Bureau Report, NDTV.
2: Also in the Red Fort address, the Prime Minister has once again put women's political representation at the center of the national conversation. But this call for greater consensus comes amid a fresh political row over the implementation of the Women's Reservation Act and its linkage with the delimitation. The Congress says women's reservation should not be tied to exercise of redrawing the Lok Sabha constituencies. The law was passed by Parliament in 2023. But its implementation remains tied to the delimitation process. Now, the Prime Minister's Independence Day pitch has brought the issue firmly back into focus.
15: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए.
0: A call for greater representation. A call for political consensus and a push to give women their rightful space in India's democracy. From the ramparts of the Red Fort, a powerful message on Nari Shakti in his Independence Day address. Prime Minister Modi also highlighted the growing contribution of Nari Shakti in the country's political journey.
15: Aaj panchayaton mein, nagarpalika mein, mahanagarpalika mein, bahut badi matra mein हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही हैं, समस्याओं का समाधान कर रही हैं, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा
0: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
8: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी. अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते हैं उस पर बिल पर?
16: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
0: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
17: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था. कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी की हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं. महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है.
0: And that brings the spotlight back to a law that was passed by Parliament nearly 3 decades ago.
15: हाँ, 454, ना 2-2.
0: The story goes back to September 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favour. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
2: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.

0: करती है तो संविधान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी श्रद्धा और करोड़ों भारतवासियों के मान और सम्मान के प्रति उनके विश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
1: लाल किला पर वंदे मातरम गाया गया, दोनों विपक्ष के नेता वहां नदारद थे और पूरे देश में जहां भी झंडा तोलन हुआ पहले वंदे मातरम गाया गया। हमने भी अपने निवास पर झंडा तोलन किया, पहले वंदे मातरम हुआ, पूरा गाया गया, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उसको रोका। ये बहुत दुर्भाग्य।
2: कानून के हिसाब से जो भी अगर इस पर कहीं केस दर्ज होता है या फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, हम मांग करते हैं सर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
1: वो नियम के हिसाब से सभी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने पूरा नहीं गाया है, जो हमने वीडियो देखा बीच में रोकने का प्रयास हो
2: जी,
1: तो कार्रवाई तो होगी।
3: टुडे इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल शेम दैट द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मैडम सोनिया गांधी skipped the Independence Day celebrations at the Red Fort for the second consecutive year. Independence Day should not be partisan. It is a joyous occasion for every Indian. And if the reason was that anything to do with the parliament, first parliamentary debate are totally separate from celebrating these national occasions which are a matter of pride for all Indians.
4: 37 28 अक्टूबर कलकत्ता का CWC रेजोल्यूशन में स्पष्ट जो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पे जो एक्सेप्ट किया था वर्जन वंदे मातरम का, वही वर्जन हमारी पार्टी के फंक्शंस में चलाना चाहिए।
5: लेकिन आज तो पूरा बजा
4: कह रहा हूँ चलाना चाहिए, चलाना चाहिए।
6: The Congress Party is not a patriotic party. The Congress Party hates anything which is nationalist and patriotic. This is why Sonia Gandhi, when the Vande Mataram was being recited at the Congress Party headquarters, was extremely angry and agitated and looked at Rahul Gandhi, and both Sonia and Rahul were extremely frustrated that how come at the Congress Party headquarters Vande Mataram was recited. This shows you that the DNA of the Congress Party is not pro-India. The DNA of the Congress Party is weak India. And this is precisely why Rahul Gandhi did not attend the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort. This also points towards one thing, that the Congress Party is suffering from Dimagi Naxal mindset which the Honorable Prime Minister spoke about. This is why it is no longer a coincidence that the Indian National Congress today is not Indian National Congress but Dimagi Naxal Congress.
7: ये कोई मुद्दा है ही नहीं। 37 में आदरणीय हमारे जब बापू महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीत लिखा था उनके बीच में मध्यस्थता बातें हो गई थी और देश को सौंपा गया था कि केवल पहला लाइन जो पहला पंक्ति है वंदे मातरम का उसको गाना है। आज हमने उसको फॉलो किया जो हमारे महापुरुषों ने दी।
8: इनको क्या संबंध है वंदे मातरम से? हमारा संबंध वंदे मातरम से 1931 में कांग्रेस ने इसको एडॉप्ट किया है, इनका कोई संबंध नहीं है। जो 50 साल तक जो है अपने हेडक्वार्टर पर RSS ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उनको क्या अधिकार ऐसी बातें बोलने का? तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जवाब आपको प्रॉपर वे में मिलेगा।
9: इस देश की परंपरा में जो पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया गया था उसमें ये नहीं रहा है, और अपने अपने तौर पर जो जहाँ गाना है गाए, लेकिन कांग्रेस की परंपरा में पार्लियामेंट में जो अडॉप्शन हुआ ये सब वो नहीं था जो आज हुआ है। तो इस पर विचार होगा, पार्टी के अंदर भी विचार होगा।
5: तो भी बीच में एक एक कांग्रेस नेतृत्व तो
9: एक मौजूदा सरकार भी बहुत कुछ तय करती है, वो तो इतिहास को अपने तरीके से गढ़ना चाहती है, अपनी तरह का बनाना चाहती है बिना किसी योगदान के। तो ये संघर्ष का विषय है, कोई एक दिन का रिजॉल्व इतने जल्दी होगा नहीं। ये संघर्ष के बाद फिर हम उसी रास्ते पे आएंगे जिसमें तमाम समुदाय के लिए, मेरे लिए मेरी ज़मीन मादर वतन है, ये ज़मीन माँ है मेरे लिए, मादर वतन है, तो हम उस मादर वतन के एक इंच से भी हटने को तैयार नहीं है। लेकिन साथ साथ अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने भाईचारा, अपने सहिष्णुता, अपने सद्भावना के उस पूरी राह पे चलने को भी तैयार है, उसको भी एक इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं।
10: From the Red Fort today, Prime Minister Modi's Independence Day address carried two clear messages and a warning against what he called Dimagi Naxal, that is, the mindset problem. And a major

0: हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है।
1: But the Prime Minister's pitch has now triggered a political counter. The opposition questioning the government's move and alleging that women's reservation is being linked to the larger delimitation exercise.
2: कौन महिला आरक्षण का सबसे बड़ा आज अगर कोई है पायनियर इस देश में तो कौन है? सोनिया गांधी। अगर इनकी नियत में महिला आरक्षण होता तो 2023 से 26 तक क्या बैठे होते हैं उस पर, बिल पर?
3: The issue is the intention of this government and the Prime Minister is not women reservation. They want to bring in delimitation under the garb of women reservation.
1: The Congress says the question is not whether women deserve reservation. The question, they argue, is why link it to delimitation.
4: महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी, हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है।
1: And that brings the spotlight back to a law that was passed by Parliament nearly 3 decades ago.
5: हाँ, 454, ना 2-2.
1: The story goes back to September 2023. The Women's Reservation Bill cleared the Lok Sabha on September 20th with an overwhelming majority. A day later, the Rajya Sabha passed it unanimously with 214 votes in favour. President Draupadi Murmu then gave her assent to the legislation. But in April 2026, the women's quota debate entered a new phase. The government brought a fresh legislative proposal linked to increasing the strength of the Lok Sabha and redrawing constituencies. The government's argument, the exercise would help pave the way for implementing women's reservation. But the opposition objected to the two issues being linked, and the political deadlock continued. Now, from the Red Fort, Prime Minister Modi has once again put Nari Shakti at center stage. Bureau Report, NDTV.
6: And now we get you these visuals where a massive tricolor yatra was held in Navi Mumbai's Kharghar to mark India's 80th Independence Day. The nearly 1,000-foot tricolor was carried by over 1,700 students, teachers and citizens from Ramshed Thakur Public School to Utsav Chowk amid chants of Vande Mataram and Bharat Mata Ki Jai.